FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। इस वक्त प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रही हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता

0: सभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आराधना में आइए सबसे पहले करें अपनी मातृभूमि को नमन इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। आइए अब करें ईश वंदना अनूप चलोटा के गाय इस शिव भजन के साथ।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना शिव भजन। आइए अब करें प्रभु राम का गुणगान दास पवन शर्मा की आवाज में।

दास पवन शर्मा और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना राम भजन। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:30 हुए हैं। समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम खेती की बात का। आज इसमें जानकारी दी जाएगी प्याज की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे हैं त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। प्याज जेला हमन अपन गांव खरहा भाषा में गोंदली की थन। ये बेरा में गर्मी में खास करके प्याज के उपयोग औ बाढ़ जाते। फिर प्याज तो ऐसे हवे जेला 12 महीना उपयोग करथन हमन, चाहे साग में डाली, चाहे भजिया बनाई, चाहे भजिया के संग में खाई, चाहे बासी के संग में खाई, चाहे साग के फोरन में डाली। कहे के मतलब प्याज के मांग बाजार में 8 काल 12 महीना रही थे, और जिन जिनिस के मांग बाजार में 8 काल 12 महीना रही थे ओखर खपत घल रही थे, और जिन संगवारी मन फसल के उत्पादन करते उमन बढ़िया साल भर मुनाफा तक को कमाते। प्याज के फसल के बात करी तो प्याज के उन्नत किस्म हैं एग्री फाउंड, डार्क रेड, भीमा रेड, भीमा, सुपर भीमा, शुभ्रा, भीमा, श्वेता। प्याज के फसल भर भूमि के चयन के जहाँ तक बात करथन तो प्याज के खेती हर प्रकार की भूमि में आसानी से करे जा सकते, जेमा पानी के निकास के बढ़िया प्रबंध हो। भूमि के चुनाव करत समय चेत ये रखना है कि भारी वर्षा जब होए तो खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। प्याज के खेती पर बढ़िया ढलान वाले भूया के चयन करना चाहिए। साधारणतः दोमट, बलुई दोमट माटी प्याज के खेती पर बहुत बढ़िया माने गए है। बीजा की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब ले 8 से 10 किलो लगते। नर्सरी में बीजा ला बोए के पहली बीजोपचार बहुत आवश्यक है। थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से फफूंदी नाशक दवा से उपचार जरूर कर लेना है। खेत में प्याज लगाना है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना आवश्यक होते। खातू माटी के जहाँ तक बात है तो प्याज के खेती में नत्रजन 100 किलो, स्फूर 60 किलो, पोटास 80 किलो, जिमा नत्रजन के आधा मात्रा, स्फूर और पोटास के पूरा मात्रा रोपाई के समय में देना चाहिए। शेष नत्रजन के आधा मात्रा रोपाई के 30 ले 40 दिन और 60 दिन के बाद 2/5 बराबर भाग में बांट के देना चाहिए। निंदाई गुड़ाई के जहाँ तक बात है संगवारी हो तो चूंकि यह तो रोपा लगे रही थे ज़्यादा बन कचरा निंदा होवे नहीं करे, फिर कोशिश करना है कि जैसे ही निंदा मन को हो थोड़ा भी बाढ़ा थे तो फसल के नुकसान मत होए एक ध्यान रखते हुए ओला नींद के फेंक दिए जाए। प्याज के खेती में 30 से 35 दिन के बाद निंदाई जरूर करना चाहिए। प्याज

फसलमा सिंचाई के बात करी तो 6 ले 8 सिंचाई के आवश्यकता पड़ते। प्याज के जो फसल है 4 ले 5 महीना में तैयार हो जाते संगवारी हो। प्याज के फसल में खुदाई के जहाँ तक बात है संगवारी हो तो ये है और दूसर फसल मनकस पीला हो जाए सूख जाए ऐसे नहीं हो। तो पहली तो ये दिन ला लिख के रखना है कि कब हम लगाए हैं कब तक के वह तैयार हो जाए। प्याज के जो खड़ी फसल है कतार में जो लगे हैं

0: ला लिख के रखना है कि कब हम लगाए हैं, कब तक के वह तैयार हो जाए है। प्याज के जो खड़ी फसल है कतार में जो लगे है ओमा रेंगे पर पड़ते ताकि पौधा के जो गर्दन है वो मुड़ जाए। एला फसल गिराना की थे, फसल गिराए के करीब 7 ले 8 दिन में कंद के खुदाई करना चाहिए। ये प्रकार ले हमारे किसान भाई मन चेत करके प्याज के खेती करी तो प्रति हेक्टेयर 250 ले 300 क्विंटल तक के प्याज के उत्पादन पा सकते हैं। राम राम, जय जोहार।
1: प्याज की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम खेती की बात। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:35 हुए हैं। समय है श्री रामचरित मानस गान का। मुख्य गायन स्वर हैं सुरेश वाडेकर के, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम नव विहान के में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर चर्चा।

श्रोताओं, ज्ञान केवल अक्षरों की पहचान नहीं बल्कि बेहतर जीवन की ओर बढ़ता हुआ वह उजाला है जो समाज और राष्ट्र दोनों का भविष्य बदल देता है। जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर युवा कौशल सीखेगा और हर नागरिक जागरूक होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। इन्हीं संकल्पों को मजबूत आधार देने के लिए देश में चलाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का उद्देश्य है हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना और आधुनिक तकनीक तथा कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। आज स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बच्चों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और रचनात्मक सोच से भी जोड़ा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार पढ़ाई को अधिक सरल और उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रोताओं, एक शिक्षित समाज ही जागरूक समाज होता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, शिक्षा के महत्व को समझें और दूसरों को भी प्रेरित करें। याद रखिए श्रोताओं, कलम की ताकत किसी भी बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इसी संदेश के साथ कार्यक्रम नवविहान का ये अंक हम यहीं संपन्न करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नव विहान में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर चर्चा। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज संध्या 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:50 होने को है। अब से कुछ ही देर में श्रोताओं हम कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत करेंगे।

FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:50 हुए हैं। ये समय होता है श्रोताओं आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोता, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगी छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। आज के कलाकार होंगी रजनी रजक, राजकुमार राजपूत, सुशील ध्रुव और साथी। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत आप सुन सकते हैं आज दिन में 10 बजे। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा हर रोज की तरह सुबह 7:05 पर। 7:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम यादों की झरोखे से का। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकते हैं दिन में 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा दिन में 11 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनिएगा आज संध्या 4:55 पर।

संध्या 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण।

संध्या 7:20 पर चलेंगे ग्राम सभा की ओर। इसमें बेरा के गोट में होगी चर्चा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर। साथ ही सुनेगा पोषण वाटिका का महत्व एवं आधुनिक मॉडल विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर निवेदिता पाठक से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगी वीरू भैया।

रात्रि 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज आप सुनेंगे गायक अभिषेक रॉय के गाए गीतों को। रात्रि 8:15 पर होगी रजनीगंधा। कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने आप सुन सकते हैं आज संध्या 6:20 और संध्या 7:00।

आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रायपुर से समाचार अपने निर्धारित समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे

0: महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के इस अंक में। श्रोताओं, गर्मी अपने पूरे तेवर में है। दोपहर में सड़कें तप रही हैं, पेड़ों की छांव भी जैसे राहत खोज रही हो। और इसी बीच हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, अब नौतपा शुरू हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मित्रों कि आखिर 25 मई से 2 जून के बीच ही नौतपा क्यों माना जाता है? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे प्रकृति, कृषि और मौसम विज्ञान का भी कोई गहरा संबंध छिपा है? तो चलिए आज जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने नौतपा की यह अवधि क्यों चुनी, इसका सामाजिक महत्व क्या है और आधुनिक विज्ञान इसे किस तरह समझता है। दरअसल नौतपा शब्द नौतपा से बना है, अर्थात वो 9 दिन जब सूर्य की गर्मी सबसे तीव्र मानी जाती है। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा की शुरुआत मानी जाती है। आमतौर पर यह समय 25 मई से 2 जून के बीच पड़ता है। हमारे पूर्वज प्रकृति के बड़े सूक्ष्म पर्यवेक्षक थे। उन्होंने सदियों तक मौसम, हवा, बारिश और खेती के चक्र को देखकर यह समझ लिया कि इस समय सूर्य की किरणें धरती पर लगभग सीधी पड़ती हैं। यही कारण है कि तापमान अपने चरम पर पहुंचता है। विज्ञान भी इस पारंपरिक ज्ञान की पुष्टि करता है। मई के अंतिम सप्ताह और जून की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप सबसे अधिक गर्म होता है। धरती तेजी से तपती है और उत्तर भारत सहित कई क्षेत्रों में लू चलती है। श्रोताओं, जब धरती ज्यादा गर्म होती है तब निम्न वायुदाब बनता है और समुद्र से नमी भरी हवाएं भारत की ओर खींचती हैं। यानी एक तरह से नौतपा की तपिश ही

वाली बारिश की तैयारी करती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, जितना अच्छा तपे नौतपा उतनी अच्छी बरसात। नौतपा केवल मौसम ही नहीं बल्कि लोक जीवन की सीख भी है। इस दौरान लोग अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करते थे। घर में बेल का शरबत, आम पन्ना, सत्तू, छाछ और जल से भरपूर चीजें दी जाती थी। मिट्टी के घड़ों का पानी, पेड़ों की छांव और सूती कपड़ों का उपयोग, ये सब प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने के तरीके थे। गांव में किसान भी इस समय खेतों की तैयारी, बीज संरक्षण और वर्षा की उम्मीदों का आकलन करते थे। यानी नौतपा केवल गर्मी का नाम नहीं था बल्कि आने वाले मौसम के लिए समाज को तैयार करने का एक पारंपरिक संकेत भी था। आज एयर कंडीशनर और आधुनिक साधनों के दौर में हम प्रकृति के इन संकेतों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के समय में हमारे पारंपरिक मौसम ज्ञान को समझना और भी जरूरी हो गया है। तो श्रोताओं, नौतपा केवल तपती धूप की कहानी नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और लोक जीवन की अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि मौसम को केवल सहना नहीं बल्कि समझना भी चाहिए। और अब श्रोताओं, नौतपा की गर्मी से मन को ठंडक पहुंचाता ये गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: श्रोताओं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस गीत ने हमारे मन को जरूर भिगो दिया। ठंडक का एहसास लिए यह गीत तन की तपिश को तो नहीं, लेकिन हाँ, मन की तपिश को सुकून दे गया। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो चला है आज की यातायात व्यवस्था के बारे में जानने का, तो आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट उमाशंकर पांडे से।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए यातायात पर आधारित सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विगत दिनों की भांति आज भी पूरे शहर में, जिले के सभी कस्बे से लेकर गांव-गांव की सड़कों में भी सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। तात्पर्य यही साथियों कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, गांव हो या शहर, सभी स्थानों की सभी सड़कों में दौड़ रहे वाहनों में दो पहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक है। छोटी एवं मध्यम दूरी की यात्रा के लिए दो पहिया वाहन लोगों की पहली पसंद है। दो पहिया वाहन का रख रखाव आसान है। उपयोग के बाद इसे अपने घर में आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी सड़क में आसानी से इसे चलाया जा सकता है। चूंकि यह हमारे घर में है, इसलिए आधी रात को भी कभी भी कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है। साथ ही इस वाहन की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि यह लगभग सभी वर्ग के लोगों के बजट के अंदर का वाहन है। किंतु एक तथ्य यह भी है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में दो पहिया सवारों की संख्या अधिक होती है। प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में दो पहिया वाहन सवारों की संख्या 60-70% तक होती है। वह भी लगभग सभी सिर की चोट से मारे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सुरक्षा मानकों की अवहेलना की गई होती है। अर्थात ये सभी बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चला रहे थे। साथियों, विज्ञान का, डॉक्टरों का भी मत है कि व्यक्ति का सिर सबसे अधिक संवेदनशील अंग होता है। सिर की चोट का इलाज सरल, सहज और सस्ता नहीं होता। यही कारण है कि दुर्घटना से सिर में चोट लगने से मानवीय क्षति अधिक होती है। और इस सबसे बड़ी समस्या का सबसे छोटा और बहुउद्देशीय हल है हेलमेट। यह हमारे जान की रक्षा तो करता ही है, 45 डिग्री तापक्रम में भी गर्म हवा अर्थात जानलेवा लू से हमारी रक्षा करता है। ठंड के दिनों में न्यूनतम तापक्रम में यह हमें ठंड से बचाता है। इसके साथ साथ तेज मूसलाधार वर्षा में पानी की बौछारें जो कंकड़ की तरह हमारे चेहरे में पड़ती है, उससे भी हमारी रक्षा करता है। इसीलिए सरकार द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। अतः सभी से निवेदन है, जब भी दोपहिया वाहन चलाएं, सहयात्री सहित हेलमेट अवश्य धारण करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज दिन में 10:30 से 11 बजे के बीच। और श्रोता, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, खेल सिर्फ मैदान में नहीं खेले जाते हैं, कुछ खेल लोगों के दिलों में भी बस जाते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उस खेल की जिसने दुनिया की सीमाएं लांघकर हर भाषा, हर संस्कृति और हर दिल को जोड़ा। एक ऐसा खेल जिसकी शुरुआत तो हुई यूरोप की गलियों से, लेकिन उसकी गूंज आज भारत के गांवों, कस्बों और शहरों तक सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की, और आज की तारीख घोषित की गई है विश्व फुटबॉल दिवस के लिए।

वैसे तो आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत 19वीं सदी के इंग्लैंड से मानी जाती है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि चीन, ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं में भी गेंद से खेले जाने वाले खेल मौजूद थे। लेकिन नियमों के साथ संगठित रूप से फुटबॉल का स्वरूप इंग्लैंड में विकसित हुआ। धीरे धीरे यह खेल यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा। फुटबॉल हमारे देश में ब्रिटिश शासन के दौरान आया। अंग्रेज अधिकारी और सैनिक अपने मनोरंजन के लिए यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे भारतीय युवाओं ने भी इसे अपनाना शुरू किया। सबसे पहले कोलकाता यानी तत्कालीन कलकत्ता में फुटबॉल लोकप्रिय हुआ। यहीं क्लब संस्कृति विकसित हुई और फिर जन्म हुआ मोहन बागान और ईस्ट बंगाल एफसीआई जैसे ऐतिहासिक फुटबॉल क्लबों का। समय बीतता गया और यह सिर्फ खेल नहीं रहा, भावना बन गया। पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, मणिपुर, मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में फुटबॉल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मैराडोना, मैक्सी, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी भारत के युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। भारत में भी सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ियों ने फुटबॉल को नई पहचान दी है। श्रोताओं, कोई भी खेल हमें टीम भावना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है। यह भी सिखाता है कि जीत अकेले की नहीं होती, पूरा मैदान मिलकर जीतता है। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ पैरों से नहीं खेला जाता, यह खेला जाता है दिल से।

श्रोताओं, गर्मी की तपती दोपहर, सूखते हुए तालाब, नीचे जाता भूजल स्तर और हर साल पानी के लिए बढ़ती चिंता। कभी हमारे गांव की कुएं लबालब भरी रहती थी, तालाब जीवन का आधार होती थी और बरसात की हर बूंद को सहेजने की परंपरा थी। लेकिन आज तेजी से बदलती जीवन शैली और पानी की बढ़ती खपत ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां हर बूंद की कीमत समझनी होगी। और ऐसे समय में साथियों, एक उपाय उम्मीद बनकर सामने आता है, वो है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन। बरसात के पानी को सहेजना ताकि आने वाले सूखे दिनों में यही पानी जीवन का सहारा बन सके। साथियों, सोचिए जरा, यदि हमारे घरों की छतों पर गिरने वाला बारिश का पानी सीधे जमीन में उतारा जाए, टंकियों में जमा किया जाए, खेतों के पास छोटी तालाब बनाए जाए, तो कितनी बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार केवल 100 वर्ग मीटर की छत पर होने वाली सामान्य बारिश से साल भर के लिए हजारों लीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है। श्रोताओं, वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत से सरल तरीके हैं, जैसे छत के पानी को पाइप के माध्यम से टंकी में जमा करना, सूखता गड्ढा बनाकर पानी को जमीन पर उतारना, खेत तालाब और मेड़बंदी करना, पुराने कुओं और तालाबों की सफाई और गहरीकरण। ये छोटे छोटे प्रयास भविष्य में बड़ी राहत दे सकते हैं। साथियों, आज कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने मिलकर वर्षा जल संचयन अपनाया और सूखे की समस्या को काफी हद तक कम किया। जहां कभी पानी के लिए लंबी कतारें लगती थी, वहां आज खेतों में हरियाली लौट आई है। श्रोताओं, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं, आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है। सूखे से लड़ाई केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बरसात की हर बूंद बचाइए, क्योंकि आज का संचित पानी ही कल की सबसे बड़ी सुरक्षा है।

श्रोताओं, जिस तरह हम अपने सोने चांदी हीरे जवाहरत को हिफाजत से रखते हैं, उसी तरह हमें पानी को भी हिफाजत से रखना होगा और हिफाजत से उसका उपयोग करना होगा, क्योंकि ये ब्लू गोल्ड हमारी भविष्य का खजाना है। तो श्रोताओं, अब इसी बातों के साथ समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। दीजिए अपनी रेडियो सखी पुष्पा को अनुमति। आपका दिन मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादों की झरोखे से का।

फिल्म गीतों के कार्यक्रम यादों की झरोखी लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके द्वार। श्रोताओं, याद कीजिए हिंदी सिनेमा का वह दौर, जब अभिनय आंखों से बोलता था, संवाद दिल में उतर जाती थी और कलाकार अपने किरदारों में पूरी तरह जी उठते थे। उसी स्वर्णिम दौर का एक चमकता हुआ सितारा थे अभिनेता सुनील दत्त। एक ऐसे अभिनेता जिनकी सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, जिनकी मुस्कान में अपनापन था और जिनकी फिल्मों में समाज, संवेदना और इंसानियत की खुशबू बसती थी।

6 जून 1929 को जन्मे सुनील दत्त साहब ने संघर्षों से भरी जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। शायद यही वजह थी कि जब वे पर्दे पर दर्द निभाते थे तो दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती थी। अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए उन्होंने मुंबई में बस कंडक्टर की नौकरी की। बाद में उन्होंने रेडियो सिलोन से रेडियो उद्घोषक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें रेडियो सिलोन के सबसे पसंदीदा उद्घोषक के रूप में पहचान मिली। और यही वजह है श्रोताओं कि जब सुनील दत्त साहब ने फिल्मों में कदम रखा तो वे जल्द ही लाखों दिलों की धड़कन बन गए।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुनः स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम यादों के झरोखे से में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनते हैं। महिला सभा हेतु फोन करें गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आज 25 मई 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर, निकला हीरो, यारियाँ, चक दे इंडिया, रंग दे बसंती। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारा फ़ोन नंबर है 2665 और 3100। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता सुनील दत्त की फिल्मों के कुछ चुनिंदा नगमे। सुनील दत्त जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म से की, लेकिन फिल्म मदर इंडिया से उनके अभिनय को सही पहचान मिली। इसमें निभाया गया बिरजू का रोल आज भी भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर माना जाता है, और इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और कार्यक्रम चल रहा है यादों की छरुखी सी। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, हम लेकर आए हैं अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के कुछ चुनिंदा नगमे आपके लिए। सुनील दत्त साहब की फिल्मों में केवल मनोरंजन नहीं था श्रोताओं, बल्कि जीवन की सच्चाई थी। फिल्म मुझे जीने दो में उन्होंने एक डाकू के मन का दर्द दिखाया तो पड़ोसन में अपनी सहज कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, हर किरदार में पूरी सच्चाई के साथ ढल जाना। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का वही कॉमेडी गीत।

फिल्म साधना हो, सुजाता हो, वक्त हो या हमराज, हर फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों के दिलों में उतर गया। सुनील दत्त जी की आवाज में एक अजीब सी आत्मीयता थी, इसलिए आज भी उनके गीत सुनते ही पुराना दौर आंखों के सामने तैरने लगता है।

सुनील दत्त जी केवल पर्दे के नायक नहीं थे, वे असल जिंदगी में भी हीरो थे। मुश्किल समय में वे लोगों की मदद करना, शांति और भाईचारे का संदेश देना, यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने राजनीति में रहकर भी जनता के बीच अपनी सादगी और संवेदनशीलता बनाए रखी।

25 मई 2005 का वह दिन जब हृदयघात ने सादगी पसंद विनम्र और हर दिल अजीज अभिनेता और राजनेता को हमसे जुदा कर दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए इस सदाबहार गीत के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम अमराई में 8:30 पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी बिलासपुर FM बैंड 103.2 MHz पर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों की झरोखी सी। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी

0: उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
4: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे।

0: आचार्य कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास

0: trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह की 8:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं छत्तीसगढ़ी लोक गीतों के कार्यक्रम अमराई का। आज के कार्यक्रम अमराई में आप जिन कलाकारों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं रजनी रजक, राजकुमार राजपूत, सुशीला ध्रुव और साथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अमराई के पहले लोकगीत की, जिसे हमने लिया है राजकुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव की आवाज़ में।

राम कुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव की आवाज़ों में ये था कार्यक्रम अमराई का पहला गीत। आइए अब अगला लोकगीत सुनते हैं रजनी रजक और साथियों की आवाज़ों में।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है और कार्यक्रम चल रहा है अमराई। इसी कड़ी में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं राम कुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव का गाया ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक गीतों के कार्यक्रम अमराई का। आइए अब सुनते हैं रजनी रजक की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे रजनी रजक की आवाज़ में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। अगला लोकगीत लीजिए प्रस्तुत है राम कुमार राजपूत और सुशीला ध्रुव की आवाज़ों में।

0: कार्यक्रम अमराई का अंतिम लोकगीत लीजिए पेश है रजनी रजक और साथियों की आवाजों में।
1: कभी आबे कर ले करार ना डोंगरी

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का कार्यक्रम अमराई FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 9 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

बाजीराव मस्तानी इस फिल्म में आपने सुना श्रेया घोषाल और वैशाली मांडे की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे, जैकी वंजारी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

तेरे बीच आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

0: फिल्म देवदास का ये गीत था। गीत और संगीत थे पंडित बिरजू महाराज के। पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, भारतीय सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्मकार सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इनका असल नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लगभग 5 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया। एक ही रास्ता, मदर इंडिया, सुजाता, गुमराह, वक्त, हीरा खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, छाया, गबन, जाग उठा इंसान, आम्रपाली, पड़ोसन, रेशमा और शेरा, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में सुनील दत्त ने दी। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुनील दत्त ने अभिनेत्री साधना, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंती माला, नूतन और नरगिस जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बेहद सफल फिल्में की। बाद के दशकों में वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस उनकी शरीके हयात थीं। नम्रता दत्त, प्रिया दत्त उनकी बेटियां हैं और सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त उनके बेटे हैं। आज ही के दिन 25 मई 2005 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तमाम पुरस्कार तो उन्होंने अपने नाम किए ही। 1968 में अभिनेता सुनील दत्त को पद्मश्री और 2005 में मरणोपरांत फाल्के रत्न पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।

द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कमाल खान की। रजत अरोरा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है। लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन के साथ साथ तमाम और वाद्यों को बजाना सीखा। 1963 में इस जोड़ी ने फिल्म पारसमणि के लिए कालजयी गीतों को स्वरबद्ध किया। इससे पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत ने बतौर बाल कलाकार फिल्म भक्त पुंडलीक और 1950 की फिल्म आंखें से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के पत्थर के सनम, इज्जत, साजन, अनजाना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीतों को संगीत से सजाया इस जोड़ी ने, और लगभग चार दशकों तक सुरीले संगीत का उनका सफर चलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 फिल्मों से अधिक में इन्होंने गीतों को संगीत से सर्वद्ध किया। हम संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

रतन धन पायो। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल हैं। हिमेश रेशमिया का संगीत है।

ये था कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता से लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे

भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

0: संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।
1: ए

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 9:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया, समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और DAP पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। और जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम

0: कम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि पर्व, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजातीय पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले दो सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार बीते वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा। शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ईंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक ही बाइक पर सवार होकर चारों युवक बाजार से लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हुआ जिसमें चारों की जान चली गई। जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप 2026 में 200 मीटर दौड़ 10.15 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। निमेश कुजूर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने निमेश को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। और जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रही थी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के फोन इन कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत का। प्रस्तुति है अंशुल गुलकरी की।

0: हमर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में आप जम्मो साथी मन के स्वागत है। झोको अंशुल गुलकरी डहारले राम राम जय जोहार। साथी होवा आज दे कार्यक्रम में आवा सुनिन हमर कौन कौन संगवारी बन हमन ला फोन करे है आउ हमन सो का बात करे है, तो आवा चलिन ए देखो फोन तको बाजे लागी से। आओ बताओ बाबूलाल भैया का हाल चाल है।
1: अरे गर्मी के मारे कहा कहे भैया, गर्मी के मारे तो प्राण छूटत है, इतना लगा
0: तो गर्मी कौन है बढ़ाए है भैया, हमने तो बढ़ाए हन।
1: हाँ हाँ हम ही मन बढ़ाए हन, गाय सब रुख राई पेड़ पौधा सब काटा था मन।
0: और बारी वारी है कि नहीं अपन घर?
1: आए
0: अपन घर डहार बारी वारी रखे है कि नहीं अपन?
1: हाँ मोर घर में तो बहुत पेड़ पौधा है भैया।
0: अच्छा बहुत पेड़ पौधा हवे। बड़का पेड़ कत का है?
1: बड़का पेड़ उतने ज्यादा नहीं है, बिही है और फूल पौधा है, उतना ज्यादा बड़ी पेड़ नहीं है भाई।
0: अच्छा
1: आप मन कौन बोला था?
0: मैं अंशुल गुलकरी बोला था भैया।
1: अच्छा अंशुल गुलकरी भैया। हाँ
0: अब का काम बुता करता भैया आप मन?
1: अब मैं तो बुता काम कर ही नहीं सका भैया, मैं तो लोगों के चक्कर में भाई की परेशान हमें। हाँ
0: एकर इलाज पानी कुछ चलत है कि नहीं चलत है भैया?
1: अब इलाज पानी का चलती है, वो उम्र हो ज्यादा हो गए तो था दवाई पानी करा था, कहां कुछ नहीं चलत है भैया।
0: अच्छा तो भैया बाबूलाल भैया अपन अपन स्वास्थ्य के देख रेख कर, बने करा।
1: हाँ हाँ हाँ
0: ठीक है, तो अपन संग बात करके बढ़िया लगीस और फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद।
2: हेलो
0: हेलो राम राम भैया, तुहर गोठ हमर गीत में अपन के स्वागत है, कौन बोला थे भैया?
2: मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में इंद्रभान सिंह बोला था और आपका कार्यक्रम में फोन कर रहे हूँ। तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में
0: बिल्कुल भैया,
2: खूब गर्मी बढ़ गई से दादा और एकदम हालत खराब हो गई से, घर में भी एकदम गरम गरम हवा चलत है
0: एकदम,
2: खिड़की दरवाजा खोल दी थी। तभी मौसम में लोगों से आग्रह करूंगा दादा की घर के जरूरी तभी बाहर निकले, खूब पानी पिए, जानवर के तो ना बांधे, उनके खूब खूब मतलब काम करना है
0: तो
2: किसी तरह के भोर में जल्दी जल्दी काम जाके धूप से पहले घर निकल जाए, आम का पन्ना के बाद प्याज सब लेकर रखना है, उनके लू न लगे, कहीं भी जा खतर है तो करते हैं गमछा बढ़िया से गाड़ी में बांध ला और गाड़ी का मेंटेनेंस देख ला की गाड़ी में बढ़िया ढंग से चक्का ऊपर में हवा हवे की नहीं है,
0: बिल्कुल
2: नहीं है, वापस पाए ट्रेन में भी जाए और वो पानी की भी बचत करें और कोशिश करें दादा की यू कोशिश करके छोटे छोटे लड़का मन इधर से उधर भागते हैं, उन के घर में रखना है, घर से जरूरी तब बाहर निकले नहीं तो ढेर गंदर रहे दादा।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, राम राम भैया। हेलो
3: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार कौन बोला थे भैया?
3: मैं सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू बोला था सर।
0: अब बता साहू जी का हाल चाल है?
3: सब बढ़िया है, गर्मी तो हला काम कर दिया है सर, बहुत गर्मी बढ़ गई है
0: बहुत बहुत। और राजनांदगांव में तो ऐसे हो गए है कि कालो सुने रहे हो मैं कि 46 डिग्री पारा रही से।
3: हाँ हाँ कल खूब तापमान खूब बढ़ गया है सर,
0: तापमान बढ़े रही से है।
3: और प्रदेश राजनांदगांव के हमेशा ही तापमान बढ़ा रहता है, गर्मी तेज है इसलिए कहीं भी आना जाना करे टोपी चश्मा लगा पहने, साथ में पानी ले चले, यही मेरा सुझाव है सर। और सब बढ़िया है, मैं तो रेडियो की दीवाने हूँ, 1983 से जुड़ा हुआ, हर आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ सर।
0: अरे वाह, अरे वाह।
3: मेरे को रेडियो सुनने का बहुत ही शौक है और रेडियो सुनने और बहुत आनंद लेता हूँ, रेडियो सुनता ही रहता हूँ मैं। हाँ
0: आप मन जैसे श्रोता मन हमार मनोबल्ला बढ़ाते।
3: हाँ हाँ सर
0: है ना। अब बतावा साहू जी क्या करता अपन काम बुता?
3: मैं गार्ड काम करता हूँ।
0: अच्छा
3: दिन में रेडियो सुनो भरपूर आनंद लेता हूँ मैं।
0: अच्छा
3: आकाशवाणी माटी की स्वर आपकी आपकी पसंद 1983 से जुड़े हुए हैं सर रेडियो।
0: हाँ,
3: से। हाँ। साथ ही पर है, तब से सुना तो उम्र अभी 60 पार होने वाला।

0: वाला है सर।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आपन संग बढ़िया बात करे हन, तेखर सेती बहुत बहुत धन्यवाद भैया, फोन करे के धन्यवाद। हेलो
2: हेलो,
1: कौन बोला था जी?
2: मैं देवरी भाटा पारा गन्नूलाल रजक बोला था भैया।
1: और गन्नूलाल भैया बतावा, का हाल चाल है?
2: सब बने बने भैया, ये दे सब खेती खार के हमर सब अकरस जोताई और सब खेत खार के तीर तेल सब यही करी चलत है, साफ करी।
1: एकदम घाम में थोड़ी न कर था आप मन?
2: नहीं, सवेरे चलते थे भैया 5 बजे।
1: अच्छा,
2: अभी अब 10 बजे थी आ गए थे।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: ओकरे अभी काम चलत है सब सफाई तीर तिखार के।
1: तो का लगा था अपन अपन खेत में?
2: हम ये दे अब बरसात है वही तो हम धान लगा था ना, वैसे तो जबर फसल के बोर नहीं है, सीधा खेत है। हाँ, तो सीधा खेत में नहीं बना, प्लाट में एक जगह तो कुछ ये कर देता हूँ बंद थे कि सभी चीज और बाढ़ लगा बोले घेर ओकर बाद बोर उकर ली से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: हाँ,
1: तो गर्मी कैसे है भैया? होती
2: गर्मी अब बढ़ गए भैया, 44-45 डिग्री सेल्सियस हो गया हवा है। गर्मी बचे बर हम सब उपाय करत हवा लगातार, सवेरे काम कर लेते अपन घर आ जाते दे, ओकर बाद जे नौ कोस काम करने शाम के लिए 5 बजे के बाद करना थी सिर्फ कुछ चलत है।
1: तो गन्नू भैया अपन अपन स्वास्थ्य के बढ़िया चेत रखा, अपन घर गरुआ और कुछ हवे के नहीं?
2: नहीं भैया, हमारे घर में एक तो हवा गाय हवा बकरू है।
1: तो मन के तको चेत रखना आपको भैया। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, साफ पानी वो मतलब बढ़िया ठंडा पानी दे के प्रयास करी है। ठीक है गन्नू भैया, अपन संग बढ़िया बात करे हन, तेखर सेती बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। हेलो,
1: तुम्हार गोट हमार गीत में अपन के स्वागत है, कौन बोलत है जी?
3: हैदराबाद तेलंगाना ले राम कुशल पटेल बोलत हूँ भैया।
1: तो पटेल जी बतावा, का हाल चाल है अपन के?
3: ये तो सब बढ़िया भैया, सभी तूफान चल रही है।
1: ये थी तो भैया अब बड़ घाम हो गए एकदम से। यहाँ कहाँ ले आपमन हस? छत्तीसगढ़ ले आपमन?
3: मेघा पारा लोरविल है भैया।
1: अच्छा, तो वहाँ कमाए खाए बर गए हस?
3: हाँ भैया।
1: अच्छा, तो कब ले वहाँ रहत हस भैया?
3: यहाँ तो 5-6 साल हो गए भैया।
1: अपन ने थी लोरमी आस की नहीं आस अपन?
3: आसन भैया अभी तो आए हम 15 महीना रह के।
1: तो वहाँ कौन काम करता भैया?
3: यहाँ मिस्त्री आदमी
1: राजमिस्त्री के काम करता अपन। और कौन कौन है भैया अपन के परिवार में?
3: 2 जन है भैया।
1: 2 जन
3: और तो बाकी हमारे गांव के वही 30-32 जन है यहाँ सब।
1: अच्छा, गांव के 30
3: मोबाइल के जरिए आकाशवाणी बिलासपुर के हर कार्यक्रम सुना था भैया।
1: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपन अपन चेत रखिया बढ़िया ले, स्वास्थ्य वास्थ्य के ध्यान रखिया।
3: हाँ भैया,
1: ठीक है ठीक है। अपन फोन लगाए हस, देखा से बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: हेलो
4: हेलो,
1: तुहर गोट हमर गीत में अपन के स्वागत है, कौन भाई बोला थे?
4: हाँ भैया नमस्कार का।
1: नमस्कार,
4: योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा गणतराई।
1: योगेश भैया का हाल चाल है जी?
4: बढ़िया भैया, गर्मी ज्यादा है, घर में रहना होते जाता।
1: हाँ हाँ, और का काम उतर करता अपन?
4: अब खेती बाड़ी काम है भैया, बाकी अभी गेहूँ कटाई बाद से अभी खेत मन सब खाली है, जोताई वोताई करते हैं और बाकी आराम करते हैं।
1: बाकी आराम करते हैं। कद का पढ़े हस?
4: अभी मैं डबल एम ए करे हूँ भैया, भूगोल और हिंदी साहित्य।
1: अरे वाह,
4: बी एड घलो करे हाँ, PGDCA घलो हवा।
1: अच्छा,
4: तो समय समय पेपर घलो दिलावत रहता हूँ।
1: अच्छा, तो पढ़ के दिलात हस की ऐसने दिला देता हस?
4: नहीं भैया, बिना पढ़े लिखे पेपर दिलावे कहाँ सफल होगा।
1: सही बात,
4: चाहे पुस्तक पढ़ाई हो आए, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई हो आए, कोनो कोनो रूप में तैयारी करेला पड़ते भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सिरतौन कहा था भैया। अभी दिन परीक्षा रिक्षा आवा थे, तेखर तैयारी तक करा था कि नहीं भैया?
4: हाँ करा था भैया, वे शिक्षक भर्ती घलो भैया है, सब तैयारी धीरे धीरे अपन स्तर में करा था।
1: अच्छा, और अपन के टेट निकल गए है?
4: हाँ, मोर तो टेट निकल गए भैया।
1: बहुत बढ़िया भैया, अब शिक्षक भर्ती तो आगे है, और सितंबर अक्टूबर में परीक्षा घलो हवे, तेखर तैयारी करा था कि नहीं?
4: हाँ करा था भैया।
1: करा था, तो का पुस्तक ला पढ़ा था भैया आप मन?
4: अब 2-3 ठन है भैया, अलग अलग लेखक बन के।
1: तो योगेश भैया अपन संग बढ़िया बात करे हन, मजा आई से। अपन ला आगु जेन परीक्षा अपन देहा, तेखर सेती खूब खूब सारा बधाई हमन आकाशवाणी तीर ले अपन ला देथन
4: जी।
1: बढ़िया,
4: धन्यवाद भैया हमरो तरफ
1: फोन करे के, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत जारी रही, तेखर पहली आवाज सुन लेथन बरसाती कौशिक ईश्वरी बनर्जी और साथी मन के आवाज में

0: हेलो,
1: हेलो।
0: तुहर गोट हमर गीत माप मन के स्वागत है। कौन बोलत हस जी?
1: राम राम भैया, जय जोहार।
0: राम राम, जय जोहार। नावला बता देवा भैया।
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोला था भैया, बेमेतरा ले।
0: आओ बतावा भैया, का हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है भैया, अभी तो भीषण गर्मी है।
0: विकट भैया, विकट।
1: गर्मी में का है, धूप के देखे घर निकलन भावत है।
0: मन निकल के बाहर निकले के
1: बाहर निकले की हिम्मत नहीं हुआ
0: एकदम एकदम सिरतन कहे।
1: तो ऐसा स्थिति में ना अपन सेहत के ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
0: सिरतन
1: ऐसा मौसम में खीरा, केकड़ी, कलिंदर, अनार, अनानास ना, बेल के शरबत घर में बना पीना चाहिए भैया।
0: बिल्कुल सिरतन कहत भैया। गन्ना रस तको?
1: हाँ, गन्ना रस घलो तको, ताकि शरीर में पानी की मात्रा बने रहे भैया।
0: बने रहे, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब ये गर्मी और पानी के दिक्कत है, खास स्थिति होत भैया के धरल्ले से पेड़ के कटाई होवत है और पेड़ लगावे नहीं है, तो ओकर स्थिति सब गर्मी ला सब सहल पड़त है भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास के नाम में विनाश चलत है, तेखर स्थिति और कुछ नहीं है भैया।
1: हाँ बस बस, एक ठन बात है, वोट के संगवारी, तो ऐसा नहीं अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए भैया। भविष्य में आने वाले पीढ़ी जो हवा है देना, ऐसा गर्मी और जल के संकट, जो पानी के संकट हुआ थे, ओकर से वो मतलब लाभ मिले, वो ऐसा स्थिति जूझे मत मिले मतलब भैया, देखे ध्यान मिले भैया।
0: और बताओ सुरेश भैया, क्या काम बुता करता आप मन?
1: मैं जैसे सारथी हूँ, तो काम घलो का सारथी के भैया। पहली जमाना में घोड़ा, रथ, टांगा सब चलावा है पूर्वज मन है। अब हम वहाँ ड्राइवरी काम करते हैं भैया, वही हमार रथ है।
0: अरे वाह, कौन गाड़ी चलाता भैया आप मन?
1: मैं टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूँ भैया, ट्रेवलर।
0: अरे वाह।

0: बहुत बढ़िया।
1: तो एक स्थान ले दूसरा स्थान सब टूरिस्ट मतलब लेके काम करता हूँ, जैसे नैनीताल है, गोवा है, नेपाल है।
0: अच्छा,
1: बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री।
0: अरे वाह।
1: असम भी जाता हूँ भैया, कामाख्या देवी, इम्फाल।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। कतका जी बैठ जाते अपन की गाड़ी में?
1: 15 जन आ जाते भैया।
0: 15 जन ओखर सामान वामान तक आ जाते? बढ़िया ले,
1: बढ़िया ले सामान वामान आ जाते, गैस चूल्हा खाना बनाए के सब सामान आ जाते भैया।
0: तो भैया जैसे अपन बाहर जाता, आप मन के लाइसेंस तक बने हो ही ना?
1: लाइसेंस तो मोहाल परमिट है भैया।
0: ऑल इंडिया परमिट है?
1: ऑल इंडिया परमिट है, पूरा हाईवे लाइसेंस है। बाहर में तो कोई परेशानी नहीं हुआ भैया।
0: अच्छा,
1: कोई प्रकार के परेशानी नहीं हुआ है। जंगल झाड़ी में पानी उनी व्यवस्था देने में दिक्कत है, में रुक के बढ़िया खाना उना बना के 1 घंटा आराम करके निकलता भैया।
0: अच्छा,
1: और जंगल झाड़ी घूमे के बहुत आनंद आते भैया।
0: बहुत बहुत बहुत आनंद आते भैया, सही कहे था।
1: और गर्मी के मौसम में तो बढ़िया।
0: हाँ, सिरतौन कहा भैया,
1: जैसे नैनीताल चल दे, हिमाचल प्रदेश, वो ठंडक तक जगह है भैया वहाँ।
0: एकदम सिरतौन कहा था,
1: और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है भैया।
0: हाँ हाँ,
1: और जैन ड्राइवर ही उधर गाड़ी चला पाई।
0: हाँ, जैन बढ़िया जानते हो ड्राइवरी, वही चला सकते। हाँ,
1: कावा सिंगल रास्ता है भैया, पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, 150 किलोमीटर ऊपर रेल लग थे।
0: हाँ हाँ,
1: तो वही तरफ लग घूम फिर के आ रहे हम भैया अभी नया साल में। नैनीताल, पालन खेत।
0: अच्छा,
1: पालन खेत जो राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुए।
0: अच्छा,
1: वही हुए भैया।
0: बढ़िया जानकारी मिले से मज़।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, फोन ला रिसीव करो तेखर सेती सार्थी परिवार डहल ले आप मल्ला आपके पूरा यूनिट ला आकाशवाणी परिवार ला कोटी कोटि बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुरेश भैया फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी बेरा बखट में फोन करत रही है।
1: हाँ भैया, हाँ,
0: राम राम। हेलो
2: हेलो,
0: तुहर गोट हमर गीत मापन के स्वागत है, कौन बोला था जी?
2: डियर नारवानी है, तको बड़े में।
0: अब बताओ नारवानी जी, क्या हालचाल है आप मन के?
2: बस बढ़िया हालचाल है, काम बढ़िया है, कपड़ा दुकान है तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन शादी ब्याह का मौसम कम हो गया थोड़ा।
0: हाँ हाँ हाँ,
2: जेठ महीना भी लग गए है तो ये मलमास महीना भी हवा है।
0: हाँ हाँ हाँ, सिरतौन का
2: ये महीना में शादी ब्याह नहीं किए जाते, अगले महीने में कुछ शादी हवा है फिर। गर्मी तो रात का बढ़ गई, कहा पता जाए।
0: एकदम एकदम भारी तपत है, एकदम
2: भारी तपत है वाकई में, लेकिन अब बचाए बनारस भी थे आम के पन्ना पीते ना, घर में बनाए ठंडा पीते तब जो खबर से हवा खाए थे।
0: हाँ, और दुकान में कूलर वूलर रखे है कि नहीं भैया?
2: हाँ, दुकान कूलर भी आ रहा है।
0: अच्छा,
2: एसी नहीं लगे है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आकाश ब्लास्ट कौन भी आकाश में कार्यक्रम सुन रहे तो पूरा दिन मनोरंजन मिलते है, ज्ञान वगैरह जानकारी मिलते है,
0: बिल्कुल,
2: और कभी बीमार नहीं पड़े।
0: 90 बच्चर के कार्यक्रम सुने रहे इसकी नहीं भैया आप मन?
2: हाँ सुने, बिल्कुल एक नंबर।
0: आपे मन के सेती तो 90 बच्चर हमारा नीति रह सके हैं।
2: पूरा की है।
0: बिल्कुल, श्रोता मन नहीं रहे तो कहाँ के आकाशवाणी और कहाँ के कुछ हूँ।
2: सही बात है, एक दूसरे के पूरक है। तो आप मन बड़े बड़े कार्यक्रम सुना पो, हम कहले जो बाबू हमन जुट हम तब आप कार्यक्रम बना के देता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सिरतौन कहा था भैया, श्रोता मन के कारण तो आकाशवाणी चलत है।
2: बिल्कुल
0: है ना, बिल्कुल,
2: आजकल क्रेज शो तो बढ़ गया है, कई आकाशवाणी चैनल खुल गए, कई प्राइवेट चैनल खड़ा खुल गए है, नया नया शो तो कई रेडियो में जुड़ गए है।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल,
2: संगीत के खजाना भी आकाशवाणी है।
0: हाँ हाँ,
2: मनोरंजन के खजाना कहे जाए, ज्ञान पर जानकारी, शिक्षा पर जानकारी, सब आकाशवाणी देते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो नारवानी भैया फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। धन्यवाद।
0: हेलो
3: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में आप मन के स्वागत है, कौन भैया बोला थे?
3: मेघनाथ पटेल बोला था, लौटना पड़े जिला कोरबा।
0: अब बताओ मेघनाथ भैया, क्या काम बूता करता आप मन?
3: अब टेलर काम करता भैया।
0: अच्छा,
3: अब समय मिल जाते ना तो अभी बिहदरा बंद हो जाते अभी।
0: हाँ हाँ हाँ,
3: अरे तेलु पत्ता में चल रहे थे।
0: अच्छा,
3: पेपर काम में।
0: बढ़िया,
3: तेलु पत्ता हरा थाना काम है ना।
0: हाँ,
3: चला था।
0: अच्छा,
3: बोरा वोरा भरा गए तो दे भेजे ही चलते कोरबा कोठा पर।
0: हाँ हाँ,
3: और कुछ लोग तो यहाँ पाली भी जाते।
0: अच्छा, कद का पैसा मिल जाते भैया?
3: अब मानक बोरा सरकार करे कह जाए अबे सैकड़ा 550।
0: अच्छा, 1 सैकड़ा के 550 रुपया।
3: हाँ,
0: अच्छा, तो बोरा में भरा के फिर जाते होती पाली और कोरबा तक?
3: हाँ, कोरबा जाते।
0: अच्छा, दोनों जगह एक रेट है कि दोनों जगह अलग अलग रेट है?
3: नहीं, एक रेट है।
0: एक रेट है,
3: एक रेट था।
0: और एक अलावा क्या करता, टेलर हो गए?

0: तेंदू पत्ता के जेन अभी काम करा था तेकर अलावा
1: खेती किसानी कर लेता हूँ।
0: खेती किसानी करता था कहो?
1: हाँ
0: ठीक। अब घर में कौन कौन है भैया अपन के?
1: मोर परिवार है, तीन जी लड़का है, मोर तो शादी कर दा रहे हैं बड़े नानी के।
0: अच्छा
1: हाँ, एक लड़का एक लड़की मोर कर अभी हवा है।
0: अच्छा,
1: अब हम दोनों मियाँ भी रखना है।
0: अरे वाह, अब लड़का मन कतका कतका पढ़ रहे भैया?
1: वो शादी कर रहे थे, बारहवीं कर दा रहे है, जो मंझली ते है अभी दसवीं पढ़ पास हो गए है।
0: अरे वाह बढ़िया।
1: और लड़का है साथी मरी से अभी आठवीं पढ़ने वाला है।
0: अच्छा, तो दसवीं में रही से तेखर कतका प्रतिशत आई से?
1: वो ला है 62।
0: अरे वाह बढ़िया। तो मेघनाथ भैया अपन स्वास्थ्य के बढ़िया चेत रखा, और घर वाला मन परिवार वाला मन खे मन के तको स्वास्थ्य के चेत रखिया, और फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद। राम राम
0: राम राम। हेलो
2: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में अपन के स्वागत है। कौन भैया बोलत
2: है? भैया
0: डगेश्वर भैया, का हाल चाल
2: है? भैया गर्मी अधिक लगत है।
0: हाँ हाँ,
2: अरे खेती खार के पूरा साफ सफाई चला था, काटा खुदी भी नहीं है।
0: अच्छा, और एक अलावा का करता अपन?
2: अब का भी अमन खेती की सारी करता नहीं।
0: और
2: ये देखे खेत में जाकर बिजाई गलत गलत है।
0: अच्छा, और का लगा था खेती में?
2: अब का भी हमारे भी क्या है, धान है, तीरा उन्हारी बोले थे उसे मौसम भैया अमन है।
0: फसल चक्र ला अपना था कि नहीं?
2: हाँ अपना था भैया अमन का है, खरीफ फसल में अपन गेहूँ वहूँ बोले थे, तीरा उन्हारी है। हम बोले थे भैया धान वान।
0: अच्छा,
2: अब गर्मी अधिक लगा भैया, क्या कर रहे गर्मी मारते पंखा खेलो का काम नहीं कर रहे।
0: बिल्कुल, तो अपन के घर छानी वाले है कि लेंटर वाले है?
2: लेंटर भी भैया खुद छानी है वहाँ।
0: हाँ तो जिन डहार छानी हुई वो डहार तो बढ़िया ठंडा तो ही।
2: हाँ वो भी ठंडा तो भैया
0: है ना।
2: हाँ
0: मतलब अब सब घर ला अपन ला छानी के करे के चाहिए नहीं?
2: हाँ सब बातों में गर्मी देखे छानिया इसे बढ़िया लगते भैया। अगर कहा जब आपके जमाना में लेंटर रहा एक छानी तो मजा घर कोने नहीं आवाज वो ठंडा बोलते।
0: हाँ हाँ हाँ
2: हाँ सही बात है भैया, हमें थोड़ा ठंडा लगते है।
0: ठंडक लगते बिल्कुल बिल्कुल।
2: कहा भी धूप में लेंटर पीछे तो करता हो ज्यादा मारते।
0: एकदम सिरतौन कहा था। तो डगेश्वर भैया फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया धन्यवाद।
0: हेलो।
3: हाँ हेलो,
0: तुहर गोठ हमर गीत में अपन के स्वागत है। कौन बोला था जी?
3: रामचंद मखिया काफिर भाई बनिया पारे धमतरी में।
0: रामचंद भैया का हालचाल है?
3: सब बने बने भैया, धूप अब बढ़ गए है।
0: हाँ हाँ हाँ,
3: और ऐसे लगते है जैसे मनुष्य मन के मन के सेकाई होते, जैसे रोटी तवे में सेकते न गरम तवे में।
0: एकदम सिरतौन कहा था भैया एकदम।
3: हाँ
0: तो एक कारण तको तो हमने छन भैया।
3: हाँ हमन कारण है भैया, पेड़ पौधा काट दे हैं।
0: हाँ
3: भूखता था
0: बिल्कुल सिरतौन कहा था, विकास करत जा था वो विनाश तको हो जाते है।
3: हाँ अब बड़े बड़े देखो रद्दा बनाते हैं गांव गली मोहल्ला शहर तक, अब पक्का मकान बन जाते हैं।
0: बिल्कुल,
3: ज्यादा से ज्यादा पेड़ अमल लगाना चाहिए।
0: हाँ।
3: पेड़ नहीं लगा सक जगह नहीं है।
0: और सुनावा का हालचाल है?
3: हालचाल बने बने
0: काम होता आप बन के
3: भगवान के दया से चले थे।
0: बढ़िया चले थे,
3: मन से का हिम्मत है, मनुष्य आए है तो भगवान के द्वारा आए है, जाही भगवान के द्वारा चलाई भगवान के द्वारा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सिरतौन कहा था भैया, ओखर बिना इजाजत के एक को पत्ता नहीं हिलाए।
3: एक को पत्ता नहीं हिले, भगवान ही हमारे पृथ्वी बैठे जन्म देते। अब देखो माँ के पेट में कैसे बच्चा होते बनते बढ़ते फिर बड़े होते है, एक सृष्टि की रचना है ना प्रकृति से।
0: बिल्कुल सिरतौन कहा था भैया,
3: बीज लामन बोतन जतन करतन बड़े होते धान होते पेड़ पौधा होते तो का लाभ लेते हैं ना।
0: बिल्कुल,
3: तो
0: बिल्कुल।
3: पेड़ पौधा मन के लाभ हम ले लेते हैं, मन के मन है बैर बैर भाव रखते एक दूसरे लड़ते झगड़ते वो नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सिरतौन कहा था भैया। रामचंद्र जी बढ़िया अपन से बढ़िया बात करे हन, तेखर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बेरा बखत में अपन तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में फोन लगात रही है।
3: हाँ
0: राम राम जय जोहार।
3: राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम सर।
0: वंदे मातरम। कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में जात जात आवाज सुन लेथन अवधेश दास और संगवारी मन के आवाज में ए गीत ला।

अवधेश दास आउ संगवारी मन के गाए दही गीत के संग कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत सिरावत है। देवा अपन संगवारी अंशुल गुलकरी ला बिदा। राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम तुहर गोट हमर की। प्रस्तुति थी अंशुल गुलकरी की। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन की 10:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पुष्पा साव और आपके ढेर सारे पत्रों के साथ हम हाजिर हैं श्रोताओं आपके ही पसंदीदा गीतों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आपके पसंदीदा गीतों के साथ। पहला गीत हमने लिया है फिल्म सरस्वती चंद्र से। मुकेश की आवाज़, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। पसंदकर्ता हमारे श्रोता साथी हैं दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु। लालपुर से हैं लुकेश और समीर यदु। ये खत आया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। आपने भी इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। नैला बोड़सरा जांजगीर से हमारे श्रोता साथी हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, गिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। गाम बगबुड़वा पथरिया से ये खत आया है नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। आपने भी इसी गीत के लिए पत्र भेजा है। हतकीरा भाटापारा से हैं पंचू यादव, दादू यादव, बावली से हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बेलसपुरिया। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सरस्वती चंद्र का ये नगमा जिसे गाया है मुकेश ने, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम आपकी पसंद में पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का। चलिए अगला गीत अब आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है RD बर्मन ने। फिल्म का नाम है सवेरे वाली गाड़ी और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं जांजगीर महंडा से राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुमलता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप। ये खत आया है लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज का। हठौत बाजार लाहौत से पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। आपने भी इसी गीत को पसंद किया है। साकरा सोमनी राजनांदगांव से हमारी श्रोता साथी हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतिन साहू, देवेंद्र कुमार, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, रजनी देवी, मास्टर प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू। बुड़गहन से ये खत आया है राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशि कांता प्रजापति का। दतरेंगी भाटापारा से हैं नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। भाटापारा से ही ये खत आया है रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज, अल्फैज खान, हजरुल निशा, सादिया खान का। बिल्हा से हैं शेख नासिर और महजबीन बानू। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर सवेरे वाली गाड़ी फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और RD बर्मन का संगीत।

0: श्रोताओं, महिला सभा हेतु एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, महिला सभा में फोन करे गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसके रिकॉर्डिंग आज 25 मई 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया और रंग दे बसंती। तो श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और लगाइए हमारा नंबर 2665923113100 पर। हाँ, फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 लगाना ना भूलें, तो हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कार्यक्रम में समय हो गया है ट्रैफिक अपडेट के पुनः प्रसारण का, तो लीजिए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए यातायात पर आधारित सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विगत दिनों की भांति आज भी पूरे शहर में, जिले के सभी कस्बे से लेकर गांव-गांव की सड़कों में भी सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। तात्पर्य यही साथियों कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, गांव हो या शहर, सभी स्थानों की सभी सड़कों में दौड़ रहे वाहनों में दो पहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक है। छोटी एवं मध्यम दूरी की यात्रा के लिए दो पहिया वाहन लोगों की पहली पसंद है। दो पहिया वाहन का रखरखाव आसान है। उपयोग के बाद इसे अपने घर में आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी सड़क में आसानी से इसे चलाया जा सकता है। चूंकि यह हमारे घर में है, इसलिए आधी रात को भी कभी भी कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है। साथ ही इस वाहन की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि यह लगभग सभी वर्ग के लोगों के बजट के अंदर का वाहन है। किंतु एक तथ्य यह भी है

0: इस सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में दो पहिया सवारों की संख्या अधिक होती है। प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में दो पहिया वाहन सवारों की संख्या 60-70% तक होती है। वह भी लगभग सभी सिर की चोट से मारे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सुरक्षा मानकों की अवहेलना की गई होती है। अर्थात ये सभी बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चला रहे थे। साथियों, विज्ञान का, डॉक्टरों का भी मत है कि व्यक्ति का सिर सबसे अधिक संवेदनशील अंग होता है। सिर की चोट का इलाज सरल, सहज और सस्ता नहीं होता। यही कारण है कि दुर्घटना से सिर में चोट लगने से मानवीय क्षति अधिक होती है। और इस सबसे बड़ी समस्या का सबसे छोटा और बहुउद्देशीय हल है हेलमेट। यह हमारे जान की रक्षा तो करता ही है, 45 डिग्री तापक्रम में भी गर्म हवा अर्थात जानलेवा लू से हमारी रक्षा करता है। ठंड के दिनों में न्यूनतम तापक्रम में यह हमें ठंड से बचाता है। इसके साथ साथ तेज मूसलाधार वर्षा में पानी की बौछारें जो कंकड़ की तरह हमारे चेहरे में पड़ती है उससे भी हमारी रक्षा करता है। इसीलिए सरकार द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। अतः सभी से निवेदन है, जब भी दोपहिया वाहन चलाएं सहयात्री सहित हेलमेट अवश्य धारण करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आपने सुना ट्रैफिक अपडेट का पुनः प्रसारण। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपके भेजे फरमाइशी गीत। तो अगला फरमाइशी गीत हमने लिया है रेशमा और शेरा फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है उद्धव कुमार ने और इसे संगीतबद्ध किया है जयदेव ने। इस गीत के लिए पत्र भेजा है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, मोहनपारा अकलतरा से हैं अभिनव अभिषेक और उमा देवी साहू। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और यहीं से हैं खुशी रौनक सेन। नवागढ़ कटई से ये खत आया है शारदा वर्मा, सीमा और दामिनी वर्मा का। बेमेतरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी। मोती गार्डन भाटापारा से हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू युग कुमार झेरिया। यहीं से हैं राम कुमार राउत, अमरिका, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत। इंदिरानगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम रजा। दतरेंगी से हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये खताया है रुवा बांधा सनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ और सौर्य जैन का। साथ में है शुभम जैन। महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगो, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज वारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से ही हैं सियाराम, अश्वनी पांडे। सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से हैं नीलू मेघ। हथनीपारा भाटापारा से ही हैं दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश किरण और दुलारी वर्मा। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर रेशमा और सेरा फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है उद्धव कुमार ने और धुन बनाई है जयदेव ने।

कार्यक्रम आपकी पसंद का अंतिम फरमाइशी गीत अब आप तक पहुंच रहा है ममता फिल्म से। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, रोशन ने संगीतबद्ध किया है और अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं, आप हैं कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बम्भर चाटेडी से है गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की और बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन। ये खत आया है तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास का। ग्राम रसीड़ा कलतरा से हमारे श्रोता साथी हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू, साथ में हैं वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। ग्राम दरचूरा से हैं ददवा साहू, भूरी साहू, संतोषी, डुलोरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। देवरी भाटापारा से ये खत आया है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, मायाराम रजक, पुनीश्वर, फानीश्वर, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या और कुमारी टानिया रजक का। आपने भी इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है। उड़नताल दागोरी से हैं श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, पल्लवी, समीर गायकवाड़। ग्राम भर्री टोला डोंडी से हैं नमित कुमार गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। धुर्रा बांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज कुमार साहू। भाटापारा से ही ये खत आया है डांसिंग रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, साथ में है नीरज रावत। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ममता फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और रोशन का

लता मंगेशकर की आवाज़ में ममता फिल्म का ये गीत था। बोल थे मजरूल सुल्तानपुरी की और धुन बनाई थी रोशन ने। और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं संपन्न करते हैं। कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निर्देशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर नूतन कॉलोनी सरकंडा। हमारा पिन नंबर है 495006। तो दीजिए अब हमें अनुमति इस कार्यक्रम से जिसका नाम है आपकी पसंद।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला।

0: हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
0: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और बिमलेश मैडम जी, वंदगी जी, आगे लिखते हैं,
0: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास

0: पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे
4: बच्चों,
5: फटने जाओ,
0: साथियों। हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
6: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
7: May I come in, sir?
8: Yes, come in.
7: Sir.
8: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
7: सर।
8: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
8: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
8: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
8: गो अहेड यंग मैन।
7: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: नवंबर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया

0: कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
1: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
1: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
3: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
2: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
2: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
2: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
2: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
2: यस सर।
6: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
6: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया।

0: तारा पोर को आंख की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज संध्या 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण। तो सुनना न भूले आज संध्या 5 बजे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी, इस एल्बम से चंदन दास की आवाज़ में, निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। स्वागत दिन के 11:55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: तस्वीर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई। और प्रदेश के सभी डाकघरों में आज से अल्प बचत खाता खोलने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज

0: राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आज और कल अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। ईंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक ही बाइक पर सवार होकर चारों युवक बाजार से लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हुआ जिसमें चारों की जान चली गई। और अब पेश है मौसम का हाल। नौतपा की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले चार दिनों तक हीट वेव चलने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यह रात में हवा भी हल्की गर्म चल रही है। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतेह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई। और प्रदेश के सभी डाकघरों में आज से अल्प बचत खाता खोलने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त

0: نہ کرنے کی دڑھ نیتے پر قائم رہنا ہوگا۔
1: بھارت اور امریکہ آتنکواد کے سبھی روپوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آتنکواد کے خلاف ہماری قطعی برداشت نہ کرنے کی نیتی رہی ہے۔ ایسا اس لیے کہ آتنکواد کے خلاف آپسی سہیوگ بہت ضروری ہے۔ ہمارے سمبندوں میں آپسی سہیوگ کی بہت بڑی بھومکا ہے۔ یہ ہماری راجنیتک سمجھ کو بنانے میں سیتو کا کام کرتا ہے۔
0: امریکہ کے 250ویں سواتنترتا دیوس پر راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکہ کے راجدوت سرجیو گور سے فون پر بات چیت کی۔ شری ٹرمپ نے سوئم کو پردھان منتری مودی کا پرشنسک بتاتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت سے پریم کرتے ہیں اور بھارت ان پر شت پرتیشت بھروسہ کر سکتا ہے۔ پیٹرول کے مولے میں آج 2.61 روپے اور ڈیزل میں 2.71 روپے کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ دلی میں اب پیٹرول 102.12 روپے اور ڈیزل 95.20 روپے پرتی لیٹر ملے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل کے مولے میں پچھلے 2 سپتاہ میں یہ چوتھی وردھی ہے۔ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय

0: देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली तनिया।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, आए दिन बहार के फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
7: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि है अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वॉडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का

झुकाया मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी भागती जरूर है लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है, ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा, बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं, आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है।

हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है, और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है, और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है, और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं, और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं, और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे, और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं, और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत, लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को, और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज हम आपके गीत बजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है, आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए, और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है, और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है, और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की उसकी पहली फिल्म कौन सी है, बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है, अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है, और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए, असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है। और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि छुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति, प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है? जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार।

0: ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति, सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 पर जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज्यादा गाए हैं, कोई कह रहा है मोहम्मद रफी ने ज्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, जरूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए हैं। बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता लिख रहा है, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम है। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठ कर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
4: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
5: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने

नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहे। ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

0: की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंत राय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले दो

0: सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकार्टे परिचर्चा

0: यात्रा में भाग लेंगे। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

नाडे के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप. फिल्म से सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है.

रस्ते ही हर

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
3: तुम्हारी याद सताती है,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: सुना रे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
1: जाने क्यों लोग मुआफा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: तत मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत ऐसे चंद तपन दिग्नाद राम तत थई राम तत थई

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: सखी सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी, स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को, सभी सखियों को, सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी, एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
1: जी,
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि, इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं। जी
2: बिल्कुल, आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं, जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: बिल्कुल मीठा ही होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए

0: कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर

0: और पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: राम दैया रे दैया बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई। लागत का है, सच्चो मर गई। आए हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ कहो तो पंडित जी को बुला ले हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
4: हाँ हाँ पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिसरानी, ये हुआ कब?
2: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
3: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
3: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
4: किया जाए हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए।

0: जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस, हरे कृष्ण
1: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तूंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
0: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण, रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण,
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया? बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही हैं? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण,
3: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण,
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
1: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
3: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,
0: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण,
2: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
2: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूं भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए,
2: अच्छा,
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
2: ऐसा?
0: हरे कृष्ण,
4: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो, और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी,
2: हाँ, ये तो क्या हुआ, बोलो तो।
4: अरे हुआ का,
5: बताए अम्मा जी।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गए
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में।
1: हाँ।
0: और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो
1: तो
0: रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे।
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते,
1: क्या
0: हैं?
1: कर सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
0: जी।
1: तो इसमें 11 11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना

0: शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: और
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा।
1: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
0: बिल्कुल
1: शरीर के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है। संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
0: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
1: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
0: वो
1: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
0: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
0: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
1: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात।
1: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और
0: जिस
1: हार जाओ।
0: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
1: हाँ,
0: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
0: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा।
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है या घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशबू हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत जरूरी
0: है। लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या?
0: वो होता है टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम
0: अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहां जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतः जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा,
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है।

0: साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ

0: तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल,
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतया जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरी परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे तलना होता है। तो घी, जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा

0: भोग है और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना उसकी रेसिपी भेजी है। तो और वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छान कर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आँच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं स्वादिष्ट रस आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना
1: बहुत
0: खाने
1: अच्छा
0: के
1: लगेगा।
0: लिए, इतना आइसक्रीम जैसा गले में
1: सच में
0: सूदिंग सूदिंग
1: बाहर की
0: लगेगा।
1: आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान
1: बिल्कुल।
0: के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत।
0: जी,

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जैसे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है। विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए। जिंदगी खुश रहने के लिए है और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से। और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या, इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है, दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कन्फर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी

0: की है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए
0: याराना फिल्म का गाना है,
1: यार।
0: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर

0: जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है,
1: सप्लीमेंट।
0: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप, हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास, वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते होंगे।
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रीसेंट है,
1: जी
0: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी जी आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
0: हाँ,
1: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
0: हाँ
1: है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: निदान
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी,
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है

0: है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
1: अच्छा
0: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
1: अच्छा
0: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको। पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है,
1: अच्छा
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा
0: पॉजिटिव,
1: कि आपकी यूनिट के बाहर या कम जो
0: हाँ,
1: होता
0: रेंज के
1: है
0: बाहर,
1: रेंज के
0: हाँ।
1: बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
0: अगर
1: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
0: जैसे
1: दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
1: जी
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं,
1: अच्छा
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
0: हाँ,
1: लेवल क्या है
0: लेवल
1: बीमारी
0: क्या
1: का।
0: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
0: जी
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो
0: चिकित्सा
1: चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाती है।
1: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहां पर बढ़ेंगे, अगले गाने के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है
1: चित्ररेखा।
0: ये,
1: हाँ
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को, मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया

0: या हमारी चेंज हो जाती है, तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं,
1: जी
0: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
1: वो कैसे?
0: एक है मेंटल मानसिक और एक है फिजिकल।
1: जी
0: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
1: जी जी
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
1: जी जी
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान।
1: जी
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है, होती है, क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है, अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है, उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: फिजिकल उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना
1: फलाना, सारी विषैली चीजें,
0: हाँ,
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
1: जी।
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का,
0: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस

भी ज्यादा रहते हैं कि आगे में आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है, तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखें, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन

0: फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है। जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए, ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा,
0: बैजू बावरा।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?

0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना,
1: पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूं एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ
1: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
0: जी,
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है
0: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
0: कोई भी मौसम नहीं है, जो
1: मौसमी
0: फल है
1: खाना
0: चाहिए,
1: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए, इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
0: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
0: ओहो,
1: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।

0: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
1: जरूर।
0: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
1: उतना ही
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो
1: बड़ी
0: चाइनीज फूड में
1: खतरनाक
0: ज्यादा
1: है।
0: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है आपने।
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
1: हाँ कम
0: इतना तो
1: कर
0: कर ही
1: दीजिए,
0: सकते।
1: मैं ये
0: जी
1: भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल।
1: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
0: जी
1: मन
0: जी
1: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
1: एक
0: चलते
1: अच्छा सा
0: चलते।
1: गाना चलते चलते मैं हूं।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अर्चोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर टकिया मेंढारी करमडीहा भगवानपुर नवापारा कुंदीकला जामदोहर अखोरा जवाखाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पूर्णपा घंघरी सकालो सरगवा गुल्हाड़ी पड़ौली अमड़ी किशुनपुर मिर्गाडांड मनोहरपुर पंडरीपानी डांडगांव बरवाली बरडांड दांतीढाप कंडराजा बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर जामचुआ

0: बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआ डी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंता डांड, परसा डांड, पेटा, सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू में हाथियों की कुल संख्या 135 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, डंगबोरा, खड़पड़ी, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण।

0: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी।

0: लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपियंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहां पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहां पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे पांचवीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहां पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज ऑल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय, और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वे ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलॉन्ग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की।

0: और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
1: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर फोर डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
2: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: Ramaswamy Palliswamy, Chikitsa Gastroenterology.
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: Shri
1: guidelines.
2: Shri Piyush Pandey, Marnopranth, Kala Vigyapan, unki patni Shrimati Neeta Joshi.
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड रिमेन्स सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: Shri Bharat Singh Bharati represented India at the Sagar Festival in Mauritius in 1987, where his album Purabiyatan was released. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स।
2: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.

0: श्री कुमार बोस कला तबला।
1: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
0: Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
1: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
0: Swami Brahmadev Samaj Seva.
1: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
0: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खासतौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
2: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
0: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
1: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन दुखी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
2: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट। She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
0: डॉक्टर
1: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
0: Shrimati Sunita Godbole.
1: ये भी कितना गौरव का क्षण है। उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
0: श्री तेची गोबिंद समाज सेवा।
1: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: Shri Gobind organized and led the Seemant Darshan Yatra in 2010 and 2021, visiting

0: remote villages bordering China, Myanmar and Bhutan. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report
1: Dr.
0: on the security.
1: Dr. H.V. Hande Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
0: B.C. Roy
1: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस. हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज इन फोक.
1: मीर हाजी कासम कला ढोलक.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है.
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Mannoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथ्रो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स.
1: श्री

0: प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
1: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
2: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर, सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
0: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
1: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी।
0: देवबा लाड, दादा लाड, कृषि।
1: देवबा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्रीरंग देवबा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
0: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
1: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स सच एज लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड फिलोसफी।
0: प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मंडल, चिकित्सा, कार्डियोलॉजी।
1: 59 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर मंडल हैज सर्व्ड ओवर 6 लाख पेशेंट्स इन ओपीडी ओवर 35 ईयर्स एंड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्ड एंड सुपरवाइज्ड 50,000 कोरोनरी एंजियोग्राम्स एंड 50,000 एंजियोप्लास्टीज।
0: प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, पुरातत्व विज्ञान।
1: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
0: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: Organ Man ke roop mein jane jate hain aur Donate Life Sansthan ke roop mein इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मंडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
0: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलई पॉलिसी, लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस, हानयांग यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया, थाईलैंड महिदॉल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज अकेडमी ऑफ साइंसेज।
0: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
1: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 20।

0: testing by the Ministry of Textiles, Government of India. She's also been acknowledged by the Government of West Bengal by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putr Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
0: वेल श्री मुखोपाध्याय इज
1: राइटिंग्स ऑन थिएटर। श्री सत्यनारायण नंदलाल नवाल, व्यापार एवं उद्योग।
2: 74 वर्षीय नवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri K. Pajanivel Khel Silambam.
2: Silambam 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980 as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshar.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
0: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
2: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
0: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr.
0: students.
1: Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.

0: कला नृत्य।
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की 3 पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts have
0: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
1: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं।
2: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रीय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
1: 86 साल के शास्त्री जी,
0: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
0: प्रोफेसर शफी शौक, साहित्य एवं शिक्षा।
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: श्री बलदेव सिंह खेल, हॉकी कोच।
1: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं, एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी
0: टैलेंट। श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
1: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की आप

0: 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's

0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM,
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी है और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as authorward in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेधन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of think global, act local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
1: श्री वैद्य
0: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi.

0: विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: प्रोफेसर जूसर वासी आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals.
0: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
1: Dr. Narayan Vyas विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
2: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
0: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
1: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस ही लेड अ सिक्स ईयर कंजर्वेशन मूवमेंट That was a huge, huge success.
0: Shri Halley War, Samaj Seva.
1: और अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
2: श्री वार has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and see if everybody is standing.
1: अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवा जगत।

युवा जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मातृका का जय जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि खेल की दुनिया में लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ मेडल्स ला रहे हैं बल्कि हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। खेल जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम बखूबी करता है। आज हम एक ऐसे खेल के बारे में बात करेंगे जिससे जब हम देखते हैं तो एक ही नाम, एक ही शब्द हमारे आसपास गूंजने लगता है और हमारे दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, और वो शब्द है गोल, गोल, गोल। ये वही गोल है जो फुटबॉल में होता है, और आज है वर्ल्ड फुटबॉल डे। वो खेल जो सिर्फ एक गेंद का खेल नहीं बल्कि दुनिया के अरबों लोगों का जुनून है। चलिए आज इसी खेल पर कुछ बातें आपसे करते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो फुटबॉल का सफर सदियों पुराना है। चीन के प्राचीन खेल कुजू से लेकर मध्यकालीन इंग्लैंड के गांवों तक इंसान हमेशा एक गेंद को पैरों से मारकर अपनी खुशियां ढूंढता रहा। लेकिन आधुनिक फुटबॉल जैसा आज हम देखते हैं उसकी नींव 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में रखी गई, जहां इस खेल के नियम कड़े बनाए गए। 1904 में फीफा का गठन हुआ और फिर देखते ही देखते इस खेल ने सरहदों को लांघकर पूरी दुनिया के दिलों पर कब्जा कर

0: लिया। फुटबॉल सिर्फ एक मैदान पर 90 मिनट तक दौड़ने का नाम नहीं, ये सिखाता है अनुशासन, टीम वर्क और कभी न हार मानने का जज्बा। ये एक ऐसा खेल है जो अमीर गरीब, भाषा और देश की हर दीवार को ढहा देता है। जब एक मैदान पर 11 खिलाड़ी पसीना बहाते हैं तो उनके पीछे पूरा देश एक सुर में धड़कता है। आपने कई फुटबॉल के खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे, पेले की कलाबाजी हो, मैराडोना का जादू, या आज के दौर में मेसी, रोनाल्डो या सुनील छेत्री की दीवानगी। फुटबॉल ने दुनिया को सिखाया है कि कैसे मिट्टी से उठकर आसमान छुआ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में हमारी आंखें मोबाइल स्क्रीन से चिपकी हुई होती हैं। फुटबॉल का क्रेज और इसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है इस दुनिया में। वीडियो गेम्स की इस वर्चुअल दुनिया में आउटडोर गेम्स यानी मैदान पर खेले जाने वाले खेलों का महत्व सबसे ऊपर है और फुटबॉल उनमें से एक है। आज के समय में युवाओं और बच्चों के बीच फुटबॉल का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। चाहे देर रात तक चलने वाले क्लब मैच देखना हो या सुबह सुबह मैदान पर दोस्तों के साथ बूट्स पहनकर उतर जाना, फुटबॉल आज की जनरेशन के लिए एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। एक आउटडोर गेम के रूप में इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमको शारीरिक और मानसिक रूप से फौलाद बनाता है। 90 मिनट तक मैदान पर लगातार दौड़ना हमारे स्टैमिना को उस स्तर पर ले जाता है जहां कोई भी जिम नहीं पहुंचा सकता। ये आज के स्ट्रेसफुल जमाने में डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहने का सबसे बेहतरीन जरिया है। मैदान पर बहने वाला पसीना सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर लीडरशिप और आपसी तालमेल की भावना भरता है। आउटडोर स्पोर्ट्स हमें स्क्रीन की नकली दुनिया से निकलकर असल जिंदगी की धूप, मिट्टी और टीम स्पिरिट से जोड़ते हैं। तो साथियों, आज के दिन सिर्फ टीवी पर मैच देखने से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ आज ही नहीं, हम रोज की बात कर रहे हैं। उठिए, फुटबॉल उठाइए और अपने नजदीकी मैदान की तरफ दौड़ लगा दीजिए, क्योंकि जिंदगी भी फुटबॉल की तरह है। आगे बढ़ने के लिए विरोधियों को डील करना होगा, विरोधियों से लड़ना होगा और जीत के लिए एक सटीक गोल करना होगा। चलिए, इन ढेर सारी बातों के बाद अब सुनते हैं कुछ संदेश, उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे एक सुरीला सा गीत।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब कार्यक्रम में सुनते हैं गीत, फिल्म का नाम है उड़ान।

आपने अभी ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना उड़ान फिल्म से, जिसमें आवाज थी अमिताभ भट्टाचार्य, और इस गीत को लिखा भी था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था अमित त्रिवेदी का। आज के इस कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, मुलाकात होगी इस कार्यक्रम की किसी और अंक में। आज के लिए इस कार्यक्रम से दीजिए मातृका को अनुमति, स्वीकारें, नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युवा जगत, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले हम जानकारी देंगे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और भेंटवार्ता का विषय होगा पोषण वाटिका का महत्व एवं आधुनिक मॉडल। इस विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर निवेदिता पाठक से बातचीत करेंगे वीरू भैया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7:00। आज रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे अभिषेक रॉय। इसके बाद 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9:15 पर। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा बैंगन की उन्नत खेती।

सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 7:05 पर 7:30 पर श्रोता आनंद ले सकते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 10:30 पर कलाब सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम लेकर आएंगे कल सुबह 11:00। कल शाम 5:05 पर साहित्यिकी में परिचर्चा का विषय होगा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को सहेजती संवारती और प्रसारित करती आकाशवाणी। प्रतिभागी होंगे विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, प्रस्तुतियों की डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कल शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम में सामूहिक चर्चा का विषय होगा घरेलू कामकाज के बीच महिलाओं की सेल्फ केयर और क्रम परिसंवाद का विषय होगा डिजिटल दुनिया के छिपे खतरे। कल ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोठ का विषय होगा धान फसल पर बीजहा के चुनाव और 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में आप सुनेंगे। संयोजन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, संपादन और रिकॉर्डिंग होगा अभिनय गौराहा का। कल रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे आगम कुमार और तुलसी कुमार निगम। 8:15 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम में ईमेल करें गीत सुनने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में समाचार कुछ ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, राष्ट्रपति हा आज 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार लेकर सम्मानित छत्तीसगढ़ के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में मिलिस पुरस्कार। पेट्रोल डीजल के भाव में एक घाव फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल 2.71 रुपया के हो है बढ़ोतरी। और प्रदेश में आज ले नौतपा के हो गए शुरुआत, मौसम विभाग प्रदेश के कोनो कोनो जगह में लू चले के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार दिन इमां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज पर पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित करेगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए रहिन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह

काली नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष ऊपर राखे गए जनजाति सांस्कृतिक समागम ल संबोधित करीन। ओमन कहिन कि ये समागम अवैया बछर म जनजातीय महाकुंभ के रूप में विश्व में चिन्ह बनही। ओमन कहिन कि भगवान बिरसा मुंडा हा जनजातीय समाज ला अपन संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन के रक्षा के संदेश दिन। ओमन कहिन कि

0: काली नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष ऊपर राखे गए जनजाति सांस्कृतिक समागम ला संबोधित करीन। ओमन कहिन कि ये समागम अवैया बछर में जनजातीय महाकुंभ के रूप में विश्व में चिन्ह बनही। ओमन कहिन कि भगवान बिरसा मुंडा हा जनजातीय समाज ला अपन संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन के रक्षा के संदेश दिन। ओमन कहिन कि जल जमीन के रक्षा के संदेश दिन। ओमन कहिन कि केंद्र सरकार हा जनजातीय समाज के विकास पर सरलक काम करत है। जनजातीय कल्याण के बजट ला 28,000 करोड़ ले बढ़ा के 1,50,000 करोड़ रूपया करे गए है। ओमन कहिन कि नक्सल हिंसा में बड़ संख्या में जनजातीय लोगन मन के जान गिस, फिर अब सरकार हा नक्सल ऊपर प्रभावी नियंत्रण पाए। गृहमंत्री हा कहिन UCC ले जनजातीय समाज के परंपरा और अधिकार ऊपर कोनो असर नहीं पड़े। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिन कि जनजातीय समाज हा दुनिया ला प्रकृति के संग बने विकास के रद्दा दिखा सकते। ओमन जनजातीय भाषा संस्कृति और परंपरा ला संजोय ऊपर जोर देवत कहिन कि राज्य सरकार हा गोंडी हल्बी और सादरी जैसन भाषा ला पारंपरिक शिक्षा ला बढ़ावा देवत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि आदि परब बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसन आयोजन हा जनजातीय पहचान और प्रतिभा ला राष्ट्रीय मंच देवत है। पेट्रोल के भाव में आज 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया के बढ़ोतरी हो है। पेट्रोल और डीजल के भाव में पाछू 2 हफ्ता में 4 बार बढ़ोतरी हो है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107.96 रुपया प्रति लीटर और डीजल 100.17 रुपया प्रति लीटर मिलत है। केंद्रीय उर्वरक विभाग के अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा कहिन है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद घलो देश में खातु मन के भंडार पूरा मात्रा में हवे। एसओ के आकलन के मुताबिक 390 लाख मीट्रिक टन भंडारण हवे। ए बेरा 200 लाख मीट्रिक टन के भंडारण हवे जौन सामान्य स्तर ले ज्यादा है। मुख्य सचिव विकासशील है अधिकारी मल्ला प्रदेश में सड़क दुर्घटना ला रोके बर जम्मू कार्रवाई करे के निर्देश दे है। मंत्रालय में सड़क सुरक्षा ला लेके राखे के बैठका में मुख्य सचिव हा कहिन कि सड़क दुर्घटना पर चिन्हारी करे गे ब्लैक स्पॉट के सरलक मॉनिटरिंग करे जाए और तुरते जरूरी सुधार करे जाए। उमर राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन के बीच आपस में तालमेल बिठा के काम करे के बात कहिन। केंद्र सरकार है ईद उल अजहा माने बकरीद के सरकारी छुट्टी में बदलाव करे है। जम्मू केंद्रीय कार्यालय विभाग और सरकारी संस्थान मन में 27 मई के जगह अब 28 मई के छुट्टी रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है 28 मई के होवैया संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगू बढ़ा दे है। एजेंसी यकीन है कि बकरीद के तारीख में बदलाव के स्थिति ये फैसला ले गए है। 9 तारीख के घोषणा जल्दी करे जाही। जानकारी के मुताबिक छात्र मन NTA के आधिकारिक वेबसाइट में देखे जा सकते। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो पांचे समाचार को थी। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में इबोला संक्रमण ला रोके बर जरूरी निर्देश जारी करे है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा डहार ले जारी निर्देश में एयरपोर्ट ले अवैया यात्री मन के स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामला के पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था ला बने ढंग ले राखे बर कहे है। संगे संग मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर ला स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में एक झीन नोडल अधिकारी नियुक्त करे के घलो निर्देश दे है। जानबा के मुताबिक कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़त मामला के बाद दुनिया में सतर्कता बढ़ा दे गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हा पहली चले एला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुके है। एला देखत भारत में घलो एहतियात बरते जाते। बलरामपुर जिला में सनावल रोड स्थित गांव पिपरान पिपरपान के तीर एक ठीन सड़क दुर्घटना में चार जिन मनखे के मौत हो गए। ये चारों मनखे मन काली संझा एक ठीन फटफटी में बैठ के बाजार ले लौटत रहिन, इही दौरान ओकर गाड़ी है सड़क के तीर खड़े ट्रैक्टर ट्राली ले टकरा।

0: आगे दुर्घटना ले दू झिन मनखे के मौकच में प्राण छूट गए और दू झिन आने मनखे मन के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। झीरम घाटी में कांग्रेस नेता मन ऊपर होए हमला के आज 13 साल हो गए हैं। ये मौका में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में रखे गए कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेता मन ला श्रद्धांजलि दिन। जानबा के मुताबिक 25 मई 2013 के बस्तर संभाग के झीरम घाटी में माओवादी मंडहार ले करे गए हमला में कांग्रेस के बड़का नेता और सुरक्षा बल के जवान मन के संगे संग करीबन 30 लोगों के मौत हो गई रही। राज्य शासन डहार ले बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर 1 ले 30 जून तक पूरा प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाए। इस दौरान सड़क में रहैया भिक्षावृत्ति बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लड़का मन की पहचान करके उमन ल समाज के मुख्य धारा ले जोड़े के प्रयास करे जाए। ये अभियान के तहत कलेक्टर की अगुवाई में जम्मू जिला मन में विशेष टीम बनाया जाए। और पेशे मौसम के हाल, प्रदेश में आज ले नौतपा शुरू हो गई है और संगे संग ए बेरा प्रदेश के कतकोन जगह में जोरदारहा गर्मी पड़े के सेती लोगन मन परेशान हो है। यही बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह में लू चले के चेतावनी दे है। उन्हें एक दो जगह में हवा गरेर के संग हल्का वर्षा होए के संभावना बताई गई है। राज्य शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जम्मू तकनीकी कर्मचारी मल्ला बिगड़े बोरिंग और पाइपलाइन मल्ला सुधारे के संगे संग पेयजल समस्या के तुरते निपटारा करे के निर्देश दे है। निर्देश के बाद गांव गवई मनमा साफ पिए के पानी पहुंचाए बर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टीम काम शुरू कर दे है। विभाग डहार ले जल जीवन मिशन के तहत चलाए जात योजना मन के बने ढंग ले संचालन के संगे संग गांव के लोगन मल्ला पानी बचाए कोती जागरूक करे जात है। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में 1 जून के मतदान हुई। एक बार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले नामांकन पत्र के जांच और नाम वापसी के काम पूरा होए के बाद अभ्यर्थी मन के आखिरी सूची जारी कर दे गई है। अब थोरकुन समाचार सार में, मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक काली 26 मई के संध्या 6 बजे अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी और बलौदा बाजार भाटापारा जिला के बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में दतैल हाथी के हमला ले एक झीन गांव के लोगों की मौत होगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर, राष्ट्रपति आज 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार लेकर सम्मानित छत्तीसगढ़ के रामचंद्र गोट बोले और सुनीता गोट बोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में मिली पुरस्कार। पेट्रोल डीजल के भाव में एक गांव फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया को हो है बढ़ोतरी। और प्रदेश में आज ले नौतपा के होगी शुरुआत, मौसम विभाग प्रदेश के कोनो कोनो जगह में लू चले के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनिए। ईमेल करें गीत सुनिए कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी की पसंद से। पहला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है कारवां। शब्द है मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है आरडी बर्मन का और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामले, करुणा मीना, अश्विनी विपुल। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम। महाराष्ट्र नगर यवतमाल से हैं मनवर सरला, मनवर विशाल, राहुल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। मंसूरी रेडियो लिसनर मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता पलक, लुबना और उनका पूरा परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमिता होजा। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विजय शुभम।

पवन जरिए के संजीव डावेरा, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, ब्रजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरन, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द। पायला कला, जिला बालोतरा से मोहनलाल प्रजापत, मणिक, उषा बाला, देवी प्रजापत। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि। ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान, छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद, देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी। गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविस मुनेश देवी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजालता, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रेटा, रजत, मयंक। चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। ये हैं फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विष्णु खेरा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेकी, यशोधरा श्राव्या। और गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता। जिला अंबागढ़ चौकी से रिजवान खाना, आयशा, सबीहा, अनस रेहान। मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्मकारवां का ये गीत।

ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनी सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। इसके अलावा आप इस सूचना का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा सूकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665992।

फोन लगाने से पहले बिलासपुर का स्टडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई और 29 मई 2026 को शाम 7:30 से रात 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम पर्वत का गीत, जान निसार अख्तर के बोल हैं, जयदेव का संगीत और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। गांव हीरा वाले फजिलका पंजाब से हैं, सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती हिमांशु, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू करण राहुल चंपा, तेलंगाना भंगेर से मोहम्मद बुरानुद्दीन यूसुफुद्दीन, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल और परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पहरा अहवारा जिला दुर्ग से पोषण बछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ और राम सहोदर, रसेड़ा से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति डीकेश डाली पूर्वेश, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या और शिवम, देवरी भाटापारा से गनूलाल रजक के आर साहू अश्विनी गणेश राम मिस्त्री, तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक आकांक्षा और माही, ग्राम ममना जिला हमीरपुर से हैं ये हैं रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल दिव्यांशी, बलौदा से हैं दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल, सोंगा मगलोड से फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी पार्थ और हेयांश और गजेंद्र, ग्राम उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी मधु आशीष शिवन्या अन्नु, नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर और रितु, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना चैतन्य मेघा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजनन येले नवदीप विश्वदीप, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर निर्मला विशाल, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल राजदीप राशी श्रीमती शीतल, बोड़सरा नहला से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली प्रियांशु, और ये हैं जिला मुंगेली से सीताराम यादव चित्तूराम कीर्ति यश कुमार मेधा और रामसरुण साथ में ललिता भी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत, स्वर है लता मंगेशकर का।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, पश्चिम बिहार दिल्ली से है नीरज अग्रवाल, सहर्ष श्लोक, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सभी है अनस रेहान, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, पूरा वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारणी, सूरज और परिवार के सभी सदस्य, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, ये हैं रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी, सालेभाटा महासमुंद से जीतू, ध्रुव, किरण, दिव्यांशी, खेमू और केवल, सरगुजा मैनपाट से रूबीना, थापा, रेशमा, सोनम, फातिमा, आदिबा और आसमा, नेहरू चौक पैठर से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं हेमंत कुमार, भाशंकर, श्रीमती प्रिया, मास्टर ओमी, कुमारी समीक्षा, ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश, वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर।

फिल्म प्रेम रोग के इस गीत के साथ ही ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आकाशवाणी के ये बिलासपुर केंद्र है, 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है।

0: मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में, 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, चिकित्सा।
5: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजाति महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजाति समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजाति कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजाति लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि जनजाति समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवन स्वरूप है। उन्होंने जनजाति भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि परप बस्तर, पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजाति पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब राजधानी

0: रायपुर में पेट्रोल 107 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। केंद्र सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सभी केंद्रीय कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। यह निर्णय चांद दिखने की संभावित तारीख और त्यौहार मनाने के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 640 पदों और सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि जनपद सदस्य के सभी 10 पदों के लिए कुल 41 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नगरीय निकायों में सभी रिक्त पदों पर न तो कोई नामांकन निरस्त हुआ है और न ही कोई निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी निर्देश में एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्रीय उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में उर्वरकों का भंडार पर्याप्त और संतोषजनक स्थिति में है। इस वर्ष का आकलन 390 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान भंडार 200 लाख मीट्रिक टन है, जो सामान्य स्तर से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट के बाद घरेलू उत्पादन और उर्वरक आयात में काफी वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन द्वारा बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 30 जून पूरे प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और अपशिष्ट संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू, पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत कलेक्टरों के नेतृत्व में सभी जिलों में विशेष रेस्क्यू टीम गठित की जाएगी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वार्ड और संकुल स्तर पर जिम्मेदारी देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान का लाभ अंतिम जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ये चारों युवक कल शाम एक बाइक पर सवार होकर बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। इससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रथम बस्तर आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत तीरंदाजी, फुटबॉल और एथलेटिक्स खेल विधाओं के लिए 28 और 29 मई को क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा जगदलपुर में चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले को आज 13 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश

0: मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर संभाग की झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों सहित करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। आज से नवतपा शुरू हो गया है, वहीं इन दिनों प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में ग्रीष्म लहर चलने और एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।
1: पिछले 2-3 दिन से प्रदेश में अधिकतम तापमान लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री ज्यादा है और मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चल रहे हैं। ऐसा वाला स्थिति जो है आगामी 4 दिन तक भी होने की संभावना है। ग्रीष्म लहर मुख्य रूप से बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के जिलों में होने की संभावना है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका अलावा भी दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में भी 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। 4 दिन के पश्चात प्रदेश में मेघ गर्जन का एक्टिविटी जो है तेज हवा के साथ और वर्षा के साथ होने की चांसेस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट एक्सपेक्टेड है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 26 मई को शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। बेमेतरा जिले के साजा में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने एक पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपए प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: थोड़ी देर में
3: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म सफर का गीत। स्वर है मुकेश का, रचना है इंदिवर की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और पसंद है आप सभी श्रोताओं की इस गीत के लिए। करणवीर हाउस भुचो कैचिया बटिंडा से हैं। परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन, अभिजोत और ये हैं मन की। लोरमी से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार, समीर। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी। लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश। सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान फैजान। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस, रेहान। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गनूलाल रजक, मुरली छेत्री। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल, सरोशे, सुषमा, परिधि, मायरा। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल। गांधी चौक बाड़मेर रास से बबलेश पवार, डैनी, मनीष। बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, संजय, अंशु,

राजीम ब्रजमत, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा अनामिका, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल, बटेडा रोड मडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तानिया, वड़खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सफर का ये गीत। स्वर है मुकेश का।

फिल्म सफर के इस गीत के बाद लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, कृष्णा घोटके। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी भारती और साहिल। लक्षनपुर जिला बलौदाबाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। ओवरटीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा। पुरानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, शीशान अहमद, शाहनवाज और उनका पूरा परिवार। ये है महाराष्ट्र उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता, प्रेरणिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि परी। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा, अजीम, जेबा। डुमरा बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम, दानिश। सारिमपुर बक्सर से राज, एच डी अंसारी, असलम अंसारी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, आसमा खातून अंसारी। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस। तेलंगाना निजामाबाद से शेखर लाभबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। भागवारा बदरसी से हैं पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा कौशल। जिला मुरादापुर ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौसलिया, आदर्श, सार्था, कलौकिक। ओढ़ो सिटी अहमदाबाद से महिमा, रूपल, राधिका, शिमाली। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली, श्लोक। इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला, साधना सुमेध। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी ये हैं जमशेदपुर से। राजधानी रायपुर से नीरू में वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जिगर का ये गीत। आवाजें हैं अभिजीत और साधना सरगम की, समीर की रचना है, आनंद मिलिंद का संगीत।

आइए अब सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का आखिरी गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की, समीर की रचना है, संगीत है नदीम श्रवण का, पसंद है आप सभी श्रोताओं की। ग्राम बड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता। अड़ान नानघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी। डोंगरगांव से राजपाल गजभी है, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय। बाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोबराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल भाड़ी, लालेंद्र, होलेंद्र, आचार्य, रोनी जैन, प्रमोदम भाड़ी। भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटोड़ी, हेमंत, उमंग और जयंती। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, श्याम कुमार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकल, रतनमाला, आरती कुमारी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे, राही बेहराज जहां। बिलाईगढ़ से हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास, वाधवानी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आशिकी का ये गीत अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की आवाज़ों में।

फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम से रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, आइए अब चलते हैं ग्राम सभा कार्यक्रम में।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी दीदी भाई बहनी मल्ला जीवन भैया के राम राम जय जोहार। संगी हो धरती हर आगे कस अंगरा तीपे हावे लख लख ले अंगरा का जनावा थे नदिया तालाब कुआं बांधा पानी दिनों दिन अटावा जाते रूख राई मन हरियर पाना उल्होए है अचिराई चिरगुन जीव जंतु जंगली

जानवर जमो मन पानी पनघट जूड़ छाव में लुकावत है। पानी ठंडा और छाए सबो के मन में भावत है। फिर श्रोता भाई बनी हो हम जमो झीन जेठ के घाम ले बाँचे के उपाय जरूर करो है ना। काहे घाम हा झकोरत है और ऐसन में शरीर के जेन पानी है पसीना के रूप में निकल जाते और शरीर में पानी की कमी हो जाते जेखर से फिर हमारे शरीर में हमारे जेन इम्यूनिटी है पाचन क्रिया है वो कमजोर पड़ जाते फिर शरीर हमार बिगड़े के संभावना रहते। तो चेत करना है काहे मौसम के माला तो सहना पड़ी और सहते हुए फिर काम बुतल करत आगू बढ़ना पड़ी। तो सुनबो ये संदेश फिर आप मन से गोठियाबो आज बेरा गोठ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में।

0: वर्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो भाई गर्मी के बेरा में अपन चेत करना है और खेती बाड़ी साग भाजी उन्हा फसल के जिन अभी सकेले हैं उग्रबूता करत और चेत करना है अपन इति तेती आना जाना है कतका बेर जाना है जूड़ छाव में चली जेखल ले घाम ले बाची जावत हैं बाहर तो कंचफी बांधिन बढ़िया है ना और चश्मा लगा लें जेखर से गर्म हवा कान के माध्यम से जन घुस जाए और बढ़िया बाटल में सीसी में ठंडा पानी जरूर रख लिया हो काहे संगी हो गहरी बेरी छीन छीन में गला सुखावत है और ऐसा बेरा में पानी ही एक सहारा है हर बूता कामला आगू करे पर। तो भाई सरकार के जिन योजना रिथे समय समय में सरकार मन घल किसान मन पर आनी बानी के सहयोग करते और हमारे कृषि प्रधान देश में छत्तीसगढ़ की बात करबो किसान भाई बहनी हो तो छत्तीसगढ़ धान कटोरा एखर बर तो आऊ हमारे विशेष चेत करते जेखर बर हमला कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए बर सरकार ह अलग अलग योजना समय समय में निकालत रही थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY भारत सरकार के एक प्रमुख प्रायोजित योजनाएं जिला 2007 में कृषि के क्षेत्र में समग्र किसान बर विकास और सार्वजनिक निवेश ला बढ़ाए देहे बर ये ला शुरुआत करे गए रही। ये योजना के मुख्य उद्देश्य है किसान भाई बहनी हो किसान मन के आय ला बढ़ाना हवे और कृषि उत्पादकता में सुधार करत और खेती ला एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में बनाए के काम करे थे। तो ये योजना के किसान मन फायदा लेवा थे काहे अलग अलग योजना ला अलग अलग किसान मन पर जैसे कम भूमि वाला है या ज़्यादा खेती वाला है सब पर अलग अलग योजना चलते और जम्मो योजना जम्मो बन नहीं रहे सबके लिए अलग अलग फायदा मिलत रहते। एखर जब बात कर वो हमन के मुख्य उद्देश्य वो का रहते विशेषता का है तो एमा वित्तीय सहायता प्रदान करे जाते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना में राज्य मनला कृषि ले जुड़े परियोजना खुद बनाए पड़ते काहे का काम करना कृषि के क्षेत्र में खुद अपन योजना बनाओ और यो योजना ला लागू करे बर सरकार हा आगू भेजते जेखर से वाला भारी वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दे जाते आधुनिक तकनीक ला बढ़ावा देना रही थी है न किसान मल्ला उन्नत कृषि यंत्र सिंचाई साधन और गुणवत्तापूर्ण कार्य थे जिन बीज के किसान मल्ला उपलब्धता कराना ये योजना के प्रमुख उद्देश्य रहे थे। इसने है कृषि उद्यमता कृषि आधारित व्यवसाय ला बढ़ावा दे बर एमा इम्यूनिटी सेंटर स्थापित करे जाते जेखर से योजना के मुख्य हिस्सा एमा शामिल होते जिनमें प्रशिक्षण दे जाते कई प्रकार के जानकारी दे जाते जेखर से कृषि के जिन उद्यमता है जिन कृषि में आगू बढ़े बर प्रयास करते वो मल्ला प्रोत्साहन दे जाते। क्षेत्रीय सहायता की बात करबो स्वायत्तता की बात करबो किसान भाई हो तो एमा हर राज्य ला अलग अलग जैसे अपन भौगोलिक स्थिति के आधार में जलवायु है ये संबंधी परिस्थिति के अनुसार

फसल जैसे विविधता की बात करबो, जैसे बागवानी है, उखर भर है, पशुपालन भर है और मछली पालन भर है, अलग अलग गतिविधि के जेन व्यवसाय है और चुने भर खुद राज्य सरकार एमा छूट दे जाते, जेखर से आप मन योजना बनाओ और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आप बढ़िया योजना बना के किसान मन ले ज्यादा फायदा दो, यही एक उद्देश्य रही थे। तो एक से जैसे हमला फायदा लेना है तो बिल्कुल आप मन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जिन पोर्टल है वहाँ जाके जुड़ सकत हो और उखर से आप मन बढ़िया ये योजना की जानकारी है विस्तार रूप से और मिल जाए। तो भाई योजना के फायदा लेना है, कतको चतुर किसान है उमन आगू ले आगू योजना आते जैसे आए तुखर जानकारी इकट्ठा करना और उखर फायदा कैसे लेना है ये सब बात के बढ़िया चतुराई ले फायदा उठावत अपन खेती किसानी के काम में बढ़िया उमन सहायता पाथे और अपन विकास के रास्ता में आगू बढ़त जाते है ना। तो आगू हम बढ़बो भाई, काहे देखत हैं अभी जम्मू तालाब नदियाँ है सब सूखा सुखा जाते, अर्पा के बात करबो तो भाई देखतन तो देखो पहले लबलब ले पानी भरे रही से है ना, और पानी हर दिनों दिनों में के सुखावत है और घर कुती के जेन गंदा पानी है अर्पा नदी मार जाते। तो भाई अर्पा के बात करबो तो अर्पा के कते सुंदर हमन गीत घला बने हैं है ना, अर्पा पैरी के धार, तो सुनी ये ममता चंद्राकर किशोर मां ये गीत ला।

0: ये गीतल स्वर दे रही है ममता चंद्राकर। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार के संध्या 7:30 ले फोन इन आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते। यहाँ किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या समाधान पाए के लिए विशेषज्ञ ले सवाल पूछ के समाधान पाते। यही कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई ২০২৬ के स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रही। एकल सुबह 10:30 ले 11 बजे तक सवाल पूछे के जैन विषय है सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम। सुबह 11 बजे ले 11:30 के जैन विषय है बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण उपचार और रोकथाम के उपाय। ये विषय संबंधित समस्या जिज्ञासा के समाधान पाए के लिए हमारे फोन नंबर है 266-592 और बिलासपुर के STD कोड 07752 जरूर लगा लेहा। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 28 मई 2026 और 29 मई 2026 संध्या 7:30 ले 8 बजे तक आप सुन सका था। तो ये तो हो गया सूचना। और अब भाई कार्यक्रम के जिन आगू हवे भेंटवार्ता पोषण वाटिका का महत्व एवं आधुनिक मॉडल डॉक्टर निवेदिता पाठक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर एला सुना इकर से गोट बात कर थे वीरेन निर्मलकर। तो सुनिए भेंटवार्ता।
1: किसान संगवारी हो आप मन ल हम समय समय में जानकारी देवत रिथन की हमार किसान भाई बहनी मन कैसन बढ़िया अपन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और खास करके हमार जन गर्भवती दीदी है दाई है ओह मन अपन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। अब आज हमार सरकार घलो है स्वस्थ भारत रखे बर तंदुरुस्त भारत रखे बर जवान भारत रखे बर एक पोषण आहार जिला कहे जाते वो सुगर रहे अच्छा रहे ये करके और कई विभागी जिन काम है ओला करवात हवे जैसन कि अब आंगनबाड़ी मन के दीदी मन बढ़िया पोषण वाटिका एक तैयार करते। मगर ये पोषण वाटिका तैयार करे पर भी एक जानकारी जानकार मनखे से जब ले जाए तो ज्यादा अच्छा रहते। तो आज संगवारी हो आज पोषण वाटिका के महत्व और आधुनिक मॉडल ये विषय में हमन गोट बात करबो डॉक्टर निवेदिता पाठक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय के हेमन।

0: तो सब पहले तो हम एक स्वागत कर लेते हैं और ओखर बाद गोट बात ला चालू करबो। डॉक्टर निवेदिता पाठक जी, जय जोहार, राम राम।
1: राम राम भैया,
0: आप के स्वागत है डॉक्टर निवेदिता पाठक जी।
1: जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी,
1: आप बहुत अच्छा विषय के चर्चा शुरू करवा था हमारे से।
0: हाँ हाँ,
1: सच में भारत में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलत है उमा, ये बहुत महत्वपूर्ण रीत है। जैसे आप अभी ही अपन वार्ता शुरुआत करे के समय बोले हो कि गर्भवती महिला के खाना पीना में ध्यान रखना है, तो वास्तव में यदि हमला अपन भविष्य अच्छा रखना है तो ओखर पर वर्तमान ला सुधारे की जरूरत पड़ी। और एमा तीनों श्रेणी के आ जाते हैं, जेमा गर्भवती महिला भी है और धात्री माता है और तीसरा किशोरी बालिका है। एमा के ऊपर हमारा भविष्य बहुत निर्भर करते, कब अगर गर्भवती महिला ला अपन पूरा पोषण आहार होकर अवस्था के हिसाब से भरपूर मिलत है, ओमा कार्बोहाइड्रेट विटामिन खनिज लवण ये सारा चीज भरपूर मात्रा में मिलत है, तो कोई कमी के रोग नहीं रही और दूसरा बच्चा स्वस्थ रहे जो हमारे भविष्य है। तो हमारा जो विटामिन और खनिज लवण है वो दोनों पोषण वाटिका से मिलते हैं, तेकर बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते कि हमला वाला कैसे लगाना है। यही प्रकार से किशोरी जो बालिका है, आपने बताया हो अभी, किशोरी बालिका भविष्य में गर्भवती माता है, तो किशोरी बालिका अगर स्वस्थ रही, बालिका मन के विषय में दो बात हो जाते हैं, एक तो जो अवस्था रहते वो हिसाब से मन क्या करते हैं कि भोजन में ना बहुत सेलेक्टिव हो जाते, मतलब हमारे घर में भी बच्चा मन ला देखना किशोर अवस्था ही रहते कि मन ला थोड़ा सा घर के खाना कम अच्छा रहते, बाहर के अच्छा लगते, ओमा बाजार वाले खाना पसंद करते, चाइनीज जो खान पान है वोला पसंद करते। एकर अलावा हमन थोड़ा से फिटनेस के भी ऐसे जागरूक हो जाते कि नहीं हमारा ऐसे दुबलापन होना चाहिए, तो कुछ खाना चीज कम कर देते लेकिन पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उमन पर कमी हो जाते। तो उमन में अक्सर यहाँ छत्तीसगढ़ में बिना उमर भी किशोरी बालिका में बहुत ज्यादा खून के कमी एनीमिया देखे जाते
0: है ना। जी,
1: और एकर दो कारण रहते हैं, एक तो जैसे मैं अभी बताया कि उमन क्या करते खाना पीना में बहुत ज्यादा चुनाव कर लेते, ये नहीं खाना ये खाना ये खाना। दूसरा, हमारे खान पान में प्रचलन में एक थोड़ा से कम अच्छा चीज आ गए, एकदम खराब तो नहीं बोल रहा मैं, अच्छा खाए के बाद में अमन अक्सर है ना, पहले के खान मन बिल्कुल अलग रही, अक्सर हमन क्या करते हैं उसके बाद चाय लेंगे कॉफी लेंगे
0: जी।
1: और जहाँ ये हमन खाए तो आयरन के अवशोषण देते वो शरीर में अवरुद्ध हो जाते, जो हमन खाते हैं शरीर से बाहर निकल जाते ओकर कोई भी रूप में अवशोषण नहीं हो। एक भी किशोरी बालिका मन ला हम अक्सर सहयोग के माध्यम से गांव में जहाँ पे लिए रहते मन ला जागरूक करते हैं, खान पान में भी वैसे देते हैं, मन ला थोड़ा सा ये भी बताए की कोशिश करते हैं कि भाई आयरन के लिए हमको ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर से आयरन की गोलियां खाएं, हम अपने खान पान में छोटा छोटा सा अंतर करके, जैसे छत्तीसगढ़ में देखना अक्सर उपास में राजगीर के लड्डू खाए जाते हैं है ना, राजगीर उमा बहुत अच्छा आयरन देते है, कभी लाल भाजी है लाल भाजी के आप खाओ, पालक लो बोले जाते हैं लेकिन हमार मुंगा भाजी में हमार हाँ नहीं सर उमा तो है ही है, मुंगा भाजी में बहुत अच्छा से है, मुंगा में है और सब
0: बथुआ भाजी
1: बथुआ में भी रही थे। एक साथ जरूरी ये है कि जब आप कोई भी आयरन संबंधित चीज लेवा था ओकर साथ में विटामिन सी लो
0: जी।
1: कब खाना से ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में अवशोषण होना चाहिए है ना। यही तारतम्य में हमन ये देखा था कि जब हमन ला भाजी वाटिका से मिलते, हमन ला आंवला वाटिका से मिलते, बिही वाटिका से मिलते जो विटामिन सी पर भी जरूरी है आयरन पर भी जरूरी है, तो हमन जब देख लेते हैं कि पोषण वाटिका काला कहे जाते कैसे लगाते हैं ओकर महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से रहते हैं है ना। तो जो पोषण वाटिका हमर छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर में कोलाबाड़ी हर घर में रहते, कोला थोड़ा से विकसित करके हमन पोषण वाटिका में आधुनिक तरीका में हमन ओकर आधुनिक मॉडल ये रहते कि हमन ओला पोषण वाटिका के ऐसे लेआउट तैयार करन कि हमन ला वर्ष में तीनों सीजन में खरीफ रवि जायद तीनों में हमन ला हर प्रकार के पोषक तत्व फल हमार वाटिका से हमला मिल जाए।

0: एमा बहुत बड़े जगह के भी नहीं जरूरत रहा है, घर के पीछे में 200 वर्ग मीटर के 300 वर्ग मीटर के जितना जगह है ओमा हमन पोषण वाटिका बनाता। ओमा हमन ला जरूरी ये है कि भाजी में सामान्य सब्जी में कंद वाले हमन ऐसे प्लानिंग करन ऐसे योजना बनान कि तीनों सब्जी हमला साल भर मिले। सर खरीद के बात है ना, और अभी गर्मी एकदम भीषण गर्मी पड़त है, छोटे से जगह में अगर हमन अभी चलाई और चेक भाजी लगा लेते थोड़ा संभालना कठिन है, डूब जाते हैं। पालक मेथी की तो बात ही नहीं है, हल्का से हमन थोड़ा से धूप थोड़ा छाया टाइप में रखन तो चलाई भाजी साल भर में, जैसे पुराना छत्तीसगढ़ में अक्सर चलाई भाजी ला बोरे और बासी दोनों के साथ में खाए, एमा छोटे से बड़ी डालना है। इतना बुद्धिमान ऋण हमारे सियान मन चलाई भाजी से आयरन मिल गए और बड़ी डाले है ना एकदम छोटे वाले बड़ी पोखर से दाल में प्रोटीन मिल गए
1: खोटनी बड़ी

0: डालना, छोटे से बड़ी डालना है। इतना बुद्धिमान ऋण हमारे सियान मन चलाई नदी से आयरन मिल गए और बड़ी डाले है ना, एकदम छोटे वाले बड़ी पोखर से दाल में प्रोटीन मिल गए
1: खोटनी बड़ी
0: खोटनी बड़ी ननकी बड़ी
1: ननकी बड़ी
0: है ना खोटनी। मतलब आप ये देखो कि कोई बतायल नहीं गए है, कोई वैज्ञानिक नहीं आए हैं, लेकिन अपन आप से उनकर आहार में जैसे पहले छत्तीसगढ़ में बासी बर बोले जाए है ना, अब ओला ओला पूरा प्रस्तावित किए जाते काबर उमा हल्के से जो खट्टा बन रही थे है ना, ऐसे एंजाइम वो विकसित कर देते कि पचे बर आसान रहते। और पुराना देखो हमारे जो मजदूर वर्ग के भाई बन रहे घर में भी थोड़ा से सुबह जब काम पर निकले तो बासी खा के निकले भात मतलब कम रहा है और पानी ज्यादा पीके पेट भरे, मतलब देखा हुआ कार्बोहाइड्रेट कम रही से पानी पेट भर के और ओला पिए के बाद प्यास भी कम लगते है, फिर मैं साफा बांध के अपन बढ़िया चले भात भी बच गए तो खर रोटी बना के सब रात में मजदूर बन बच्चा मन छोटे छोटे टुकड़ा में खा ले, कोई बर्गर पिज्जा बिस्किट कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये बताते हैं कि जैसे हम चावल की रोटी बनाए चल उमा हम सिर्फ चावल आटा ले हन थोड़ा से भाजी डाल लन तो हम लोग कहीं से पोषण मिल जाये उमा
1: जी। हाँ।
0: तो जो पोषण वाटिका रही थे उमा मतलब महत्व वो खर ये है कि हम लोग पोषण युक्त सब्जी साल भर तक मिलत रहा है ठीक है, पेशा वर्दी से तैयारी करे के बात है ना। तो उमा हमन ये ध्यान रखना है
1: जी
0: एकर तैयारी बर जैसे अभी है तो हमन पूरा अच्छा से बाड़ी ला पूरा जुताई कर लन साफ कर लन पूरा कोना कोना तक है ना, और पहले से ही कागज में हमन तय कर लन जैसे पानी वाले जगह है मतलब पानी बर भी ऐसे है घर के पानी के एक एक बूंद उपयोग करना है, हमारे बर्तन मांजे कपड़ा धोए नहाए के पानी जो निकलत है ओला नाली बना के हम लोग बाड़ी तक ले जाना है
1: अच्छा
0: ना। और बाड़ी ओमा भी पूरा ऐसे ही नाली बना लेना है कि प्रॉपर सब जगह तक वो चले जाए, और कम पड़ा से तो फिर हम हैंडपम्प या टेप नल है ओमा से हम व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे जो पोषण वाटिका है ओकर तीन चार मुख्य अंग रहते सबसे पहली ये रहते कि एक जगह हमारा ऐसे रहना चाहिए थोड़ा सा ऊंचा जहाँ पे हमन बीज से थरहा तैयार कर रहे तब हम टमाटर मिर्ची भटा ये सब ला सीधा नहीं लगा सकते निकाल हम लोग थरा तैयार करना देते आगे भूसी वगैरह भी आते हैं। तो एक जगह हम थोड़ा से ऊंचा करके लंबाई हमार जो वाटिका है ओखर अनुपात में ले वो तैयार रखना है ना। अब हम तो कोशिश करना है कि ये बाड़ी के पूरा हमन मई के आखिरी तक पूरा बाड़ी साफ सुथरा करके पूरा तैयार कर लन ठीक है, एक वो जगह हो गए। दूसरा हमन ला कोई एक कोना में वर्मी कंपोस्ट के टाका फिट लगाना है। अब वर्मी कंपोस्ट पर जैसे पहले हमन खातु के गड्ढा कर लन है ना, खातु गड्ढा में पानी भर जाते साल भर लगते
1: हाँ।
0: हमन का कर वो बहुत 900-1000 रुपए के आते फिट एक
1: अच्छा।
0: हरा रंग के कोई
1: हाँ।
0: कोना हमन फिट कर देन ठीक है। दो बात है, तीसर बात हमन ला अपन बाड़ी में सिर्फ सब्जी नहीं चाहिए, जो पोषण वाटिका रहते वहाँ फल और सब्जी दोनों चीज रहते
1: जी
0: है ना। तो वो हमारा रहा है थोड़ा से किनारे किनारे में रहे, ज्यादा आया मत पड़े। और ओखर भी अगर हम कैनोपी मेंटेन कर ले वो ना आप देखना बहुत ऊंचा ही फल की जरूरत नहीं रहा है, जैसे आम के इतना अच्छा किस्म आ गए देन थोड़ा से 8-10 फीट में बहुत अच्छा उम्र में फ्रूटिंग आते है ना। तो हमला जरूरी है माँ आम जिमा हमला विटामिन ए मिला है, आम के भी किस्म ऐसे चुनन जेकर बहुत अधिक लंबाई मत रहे और दूसरा वो हमर एक दो तीन साल में फल देना शुरू कर दे ऐसे विकसित किस्म क्योंकि महाविद्यालय में आराम से मिल जाए। दूसरा पपीता है तो पपीता पर बहुत जरूरी है कि आप अभी बीज ले आओ उधर खर वो पूरा पौधा तैयार कर लो, जब आपके 10-15 दिन हो जाए तो अभी से लगा दो। तीसरा है अमरूद है ना
1: जी।
0: और चौथा केला है तो केला ला वहाँ में लगाना है जहाँ पे ज्यादा पानी पानी है वहाँ पे आप लगा दो है ना। और अगर मान ले हमला मिल जाते आंवला वगैरह तो ओला किनारे किनारे में लगा देना है ठीक है। एक हर से भी महत्वपूर्ण है कि हम अगर कोई एक कोना बन जाए तो वहाँ बेल लगा लें ठीक है। अब बेल के मैं दोनों रूप में महत्व बता दूंगा,
1: एम
0: कहावत है जिसे हमला पपीता लगी तो वहाँ विटामिन ए मिल

0: ही पपीता उकेरा से
1: हाँ.
0: ना हमला विटामिन सी पर हम भी लगाए हुए हैं
1: जी.
0: और एक साथ साथ में ये सब आप किनारे में लगा दो, लगाए के बाद में हमला बीच में अब पूरा बाड़ी तैयार करना है ना. बाड़ी पर हम पूरा छोटे छोटे क्यारी बना लन, सिंचाई भर पानी की नाली निकाल लन, रास्ता बना लन. मतलब हमारा बाड़ी इतना साफ चौबंद रहना चाहिए, रास्ता सिंचाई नाली और हमार क्यारी जिम्मे हम पूरा बाड़ी में कहीं पे भी आराम से आ जा सकन, ये काम हम कर सकत हन
1: जी.
0: तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते है ना. तो ये इतना चीज आपका ध्यान रखना है. अब सब्जी के भी बात है ना
1: जी.
0: तो कुछ सब्जी जो थरा से तैयार होते हो खाना मन थरा तैयार कर लन है ना जी. अभी मैं बताया हूँ औ जैसे बीच में आप भिंडी लगाए हो है ना, बीच में आप बरबट्टी लगाए हो, तो किनारे के में मेड़ जो है हमारे छत्तीसगढ़िया किसान मन बहुत अच्छा जानते हैं, वहां आप जो मूली लगा दो है ना. कुछ जगह में आप जैसे ये मौसम में नहीं बना है ना, थोड़ा सा ऊंचा करके आप धनिया पत्ती देखना बहुत महंगा मिलते हैं सीजन में.
1: जी जी जी
0: ठीक है. तो हमार जो बाड़ी है अच्छा अब एमा का करना है, जैसे कि यदि आप प्राकृतिक तरीके से करना चाहता हो तो एमा थोड़ा से बीज ला जो है जैविक उमा से उपचारित कर सकत हम और खाद भी हम कोशिश करन जीवामृत घन जीवामृत वाले डालन जेमा हमला कोई भी रासायनिक के नुकसान मत होए. और बहुत अच्छा बात बताओ तो भैया अभी ना हमार आदरणीय प्रधानमंत्री साहब एक आह्वान भी करे है कि मिट्टी हमारी खराब हो रही है, हमको प्राकृतिक खेती की ओर जाना है और उससे हमको हमारी भूमि को सुधारना है
1: जी.
0: तो और अभी मैं बता रहा हूँ कि किनारे में हमला एक टांका लगाना है.
1: हाँ.
0: वो टांका में हमन जितना हमार बाड़ी से सफाई करे के बाद नीदा निकलते कचरा निकलते वन कचरा बोलते है ओला हमन उमा डाल दन
1: अच्छा.
0: है ना. का हुई हमला जिस अभी
1: जी
0: हमार ये खरीफ मौसम के सब्जी रहते हैं वहाँ बहुत सारे हमारे नार वाला सब्जी है ना, बहुत अच्छा से होता है जेमा लौकी है ना,
1: बरबट्टी है,
0: खेखी मिल जाए कहीं से
1: अच्छा,
0: ये खीरा है अगर खेखी मिल जाए तो खेखी में हमन ला थोड़ा से मेल फीमेल दोनों प्लांट रखना पड़ते पांच फीमेल में एक में, तो खेखी में भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छा रहते
1: अच्छा
0: है ना. तो हम पूरा एक तैयारी कर लन भाजी में हम कोशिश करन ये समय में चौलाई अच्छा रहते और थोड़ा सा चेंज भाजी. दूसरा अभी हमारा इतना अच्छा है खेड़ा भाजी, भाजी भी अच्छा लगते है और खट्टा खेड़ा भी अच्छा लगते
1: जी जी.
0: और आप एमा भिंडी है बरबट्टी है ये सब्जी गंवार फल्ली है ना ये ले सकते हो. दूसरा आप टमाटर यदि ले था तो ध्यान से किस्म देख के लाओ
1: अच्छा.
0: तो आप ये भी ध्यान देना जब हम मैं अभी बताया हूँ कि थरहा भर हमला थोड़ा ऊंचा बेड तैयार करना है तो वो ऊंचा बेड में हम थोड़ा से जब पैरा से ढक दें कवर दे दिया है गर्मी के मौसम लेकिन पानी भी बहुत तेज आ जाते हैं तो अगर हम खुला छोड़ देबो तो कहे बीजा पूरा पानी में वो खा गए है ना. तो हम पैरा से ढक दें जमा सीधा पानी मत पड़े तो एक वाटिका जो वर्मी कंपोस्ट के पीठ है जेमा सिंचाई नाली है जेमा रास्ता है और एक साथ साथ जितना अभी नार वाले सब्जी बहे ओमा हमन ढेकचा गरिया के परमानेंट पोल ढेकरा गरिया के पूरा परमानेंट वो घर बना लन वहाँ पे. कुछ बाड़ी वाले मन का करते परमानेंट लोहा से पोल बना दिए रहते
1: हाँ.
0: आप सब चढ़ाओ है ना, ताजा सब्जी तोड़ाओ
1: हाँ.
0: कोशिश करो कि कीटनाशक के आप उपयोग मत करो, थोड़ा से मैनी मैनी अगर दिखाते तो मत हम चक्कर पानी घोल के डाल देवो तो हल्का पतला वाले तो वो कीड़ा वाला खा लेते. आपके बाड़ी में कन वाले भी रहे सब्जी सामान्य सब्जी भी रहे पत्तेदार भी रहे, थोड़ा से बरसात में आप कोशिश करो कि पत्तेदार सब्जी में कीड़ा जल्दी पता नहीं चले
1: हाँ.
0: तो अगर एक तो लगाओ कम और अगर लगा भी हो तो तोड़ के जब खा तो थोड़ा कुनकुना पानी में नमक डाल के डुबा लो तो घर वाले उपयोग करो. वैसे भी देखना हमारो माँ हमन थोड़ा सा जुलाई अगस्त में नहीं खान भाजी, हमन सीधा कब खाते हैं हमार छठ से शुरू करते हैं सीधा छह प्रकार के भाजी खाएं और पहली पूजा करें और फिर ओला हमन आहार में ले
1: जी जी
0: है ना. तो ये किया हमारे आधुनिक

0: पोषण वाटिका के मॉडल है ना। ये सारे एक मुख्य तत्व रिथे, एक मुख्य फायदा ये रिथे कि हमन ला सबसे पहला बात हमार बहिनी मन ला ताजा सब्जी मिल जाते। दूसरा बात है उनका जो घर के पास पड़े जमीन है देखकर उपयोग हो जाते। अलग से व्यायाम घूमना वाले की जरूरत नहीं, ताजा हवा में मन काम कर लेते हैं तो एक प्रकार से एक्सरसाइज वाले चीज भी वहां से हो जाते। दूसरा ओमन के जो घर के अतिरिक्त बचे पानी है ओकर सब्जी उत्पादन में उपयोग।
1: तो डॉक्टर निवेदिता पाठक जी, आप समय निकाल के हमारे किसान भाई बहनी दीदी है लेकर जवान सबो वन पर बड़ा सुग्घर बात बताया हो कि पोषण वाटिका के महत्व और आधुनिक मॉडल कैसे तैयार करे जाए। आप समय दिया आकाशवाणी परिवार ला एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार भाई, आप ला सुनैया भाई भाई मन ला जय जोहार, धन्यवाद आप मन।
1: तो किसान संगवारी हो, हम गोट बात करते हैं डॉक्टर निवेदिता पाठक जी मन से, इमर रहने विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। अब हमरो विदा ले कह भी रहो गए तो अब जा जय जवान जय किसान वीरु वीरेंद्र भैया के राम राम।
0: राम राम वीरु भैया।
2: तो अभी सुने पोषक वाटिका के महत्व एवं आधुनिक मॉडल डॉक्टर निवेदिता पाठक विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर अंकर से गोट बात करी बीरेन्द्र भैया। अब आप सुनी एक गीत जिला स्वर दिए नवल दास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी के स्वर में, ये गीत सुनाओ।

ये गीत लसवरदरी से नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी। आज के मंडी भाव तखतपुर में मिले बिलासपुर तखतपुर मंडी में धान महमाया 1900 ले 1900 अब ये धान महमाया के 2000 ले 2000 दो भाव मिले है। बिलासपुर के आज के तापमान अधिकतम 45.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29.0 डिग्री सेल्सियस। सलाम कहबो गर्मी बाढ़े है पशुधन मला नमक पानी पिलाओ पशुधन मला हरियर चारा बर्सिंग नेपियर सुडान 3:1 के हिसाब से सूखा चारा के साथ जरूर खिलावा और अपन चेत करो गर्मी ले बाँचे के और अपन चेत करिए जैन पशु पाले किसान भाई मनो मन नन्हे नन्हे जैन बछड़ा है बछिया है पड़ू है उनकर चेत करो किसान भाई हो अब एकरे संग देखाओ ग्राम सभा कार्यक्रम ले जाए बेरा हो गए दो विदा जीवन भैया घर जाके जय जोहार राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अभिषेक रॉय।
1: न आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है।
2: कब आते हो, कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर धूप सिसकती रहती है। कब आते हो, कब जाते हो।

बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठ के मुझको देखती रहती हैं। कब आते हो, कब जाते हो, दिन में कितनी बार मुझे तुम याद आते हो।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा सुकर में स्वाइन फीवर बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बकरियों में PPR बीमारी के लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 मई और 29 मई 2026 को शाम 7:30 से रात 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। सुगम संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश। कलाकार हैं अभिषेक रॉय।

मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी।

0: टुकड़ा एक नज्म का दिन भर मेरी सांसों में सरकता ही रहा। लब पे आया तो जबां कटने लगी, दांत से पकड़ा तो लब छिलने लगे। ना तो फेंका ही गया मुंह से, ना निगला ही गया, कांच का टुकड़ा अटक जाए हलक में जैसे। टुकड़ा वो नज्म का सांसों में सरकता ही रहा।
1: अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतिम पेशकश।
0: बंद होती है ये सीप की रात, पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से चले जरस की नमनाक सदा, और झुकते हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई हो।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए चित्रपट, क्षमा कीजिए, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रत्ना का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त को।

श्रोताओं, 6 जून को जन्मे सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। उन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी और कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपनी सार्थक भूमिका निभाई। उनके बेटे संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। भारत सरकार ने सुनील दत्त को सन 1968 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया।

सुनील दत्त ने अपने कैरियर की शुरुआत दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन रेडियो सीलोन पर एक उद्घोषक के रूप में की, जहां वे बहुत लोकप्रिय हुए। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय करने की ठानी और मुंबई आ गए। सन 1955 में बनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया।

श्रोता, सुनील दत्त की सबसे बेहतरीन फिल्म थी मुझे जीने दो, जो डकैतों के जीवन पर बनी थी। इस फिल्म में उन्हें सन 1964 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। उसके दो वर्ष बाद सन 1966 में फिल्म खानदान के लिए उन्हें फिर से फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं फिल्म मुझे जीने दो का ये गीत।

सन 1957 में बनी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में शूटिंग के वक्त लगी आग से अभिनेत्री नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त बुरी तरह से जल गए थे। इस घटना के बाद ही सुनील दत्त और नरगिस विवाह सूत्र में बंध गए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है सुजाता।

सन 1950 के आखिरी वर्षों से लेकर सन 1960 के दशक में सुनील दत्त ने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से कुछ के नाम हैं साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, मिलन, खानदान, पड़ोसन और हमराज़।

फिल्म में मिलन के लिए सुनील दत्त को बंगाल फिल्म में जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सन 1967 में मिला। बतौर निर्माता और निर्देशक उनकी कुछ फिल्मों में से हैं यह आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रेशमा और शेरा। फिल्मों और राजनीति के अलावा भी सुनील दत्त ने सामाजिक लोक कल्याण के कार्यों में अपना योगदान दिया।

और इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आज हम याद कर रहे थे भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 8:45 होने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और

0: ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के

लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्वभर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मुहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।

0: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक।
1: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
0: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
2: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
0: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
1: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए

संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब

40 और 50 के दशक में हुस्न लाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चार फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला

फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में, सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के। ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय रात के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।

इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।